कभी कभी प्रकृति का बदलता मौसम हमें जिंदगी का सबसे सुंदर पाठ पढ़ाता है। कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बादलों के बाद धूप आती है, पतझड़ के बाद बहार आती है और रात के बाद सुबह जरूर होती है। इसलिए अगर आज

सुबह सिर्फ सूरज की रोशनी नहीं लाती, यह हमारे भीतर नई ऊर्जा भी जगाती है। आज किसी से प्रेम से बात कीजिए, किसी की मदद कीजिए, अपने लक्ष्य की ओर एक छोटा सा कदम बढ़ाइए और मन में विश्वास जरूर रखिए।

और इस समय कह रहे कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए। जाने से पहले बस यही कहूंगी कि आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और साथ ही साथ सुनते रहें आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।

0: ఆకాశవాణి ఎఫ్ఎం రెయిన్బో 101.9 మెగాహెడ్స్ 2 o'clock సమయం 6 గంటలు కావస్తోంది. మరి కాసేపట్లో హిందీలో అనంతరం ఆంగ్లంలో వార్తలు వింటారు.
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की. बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई. प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा. उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है. श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया. उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीकों में सुधार होना चाहिए. प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के

0: बीच बेहतर संवाद पर बल दिया ताकि नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सके। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री, वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इसकी जानकारी दी। श्री शाह ने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को न्याय और उन्हें मिलने वाली कानूनी सेवाओं का लाभ उठाने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य हिस्सों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कहा है कि किसी प्रश्न के उत्तर की चुनौती प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज कर दिया है। एनटीए ने बताया कि यह एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें जेईई मेन, नीट या यूजीसी नेट परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थायी उत्तर में मौजूद गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अगर कोई भी उम्मीदवार किसी प्रश्न को चुनौती देता है और विषय विशेषज्ञ उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं तो संशोधित उत्तर परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवार पर लागू होता है। और खेलों में नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज भारतीय खिलाड़ी पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में खेलेंगे। पुरुष डबल्स की जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी का मुकाबला चीन के तीसरी वरीयता प्राप्त लियांग वेई खेंग और वांग चांग से होगा। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का सामना चीन की चौथी वरीयता प्राप्त चिया यी फेन और झांग शू शियांग से होगा। वहीं हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज अम्स्टरडैम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. Prime Minister Narendra Modi chaired the third high-level meeting with secretaries to the Government of India at his residence yesterday and discussed the future action agenda of ministries and departments dealing with infrastructure and connectivity, security, external affairs and governance. He urged secretaries to think with a long-term perspective on how the country's future should be shaped. Calling for greater interoperability and effective use of data, Mr. Modi noted that data is a national asset and a resource for the future. He also emphasized the need to further strengthen the country's defense industry and make it more competitive at global level.

दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में चल रही विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में रोमांच लगातार परवान चढ़ रहा है। कोर्ट पर भारतीय खिलाड़ियों की जुनून, दर्शक दीर्घाओं में लहराते तिरंगे और शानदार रैलियों पर दर्शकों की तालियों ने भारत की मेजबानी को और भी खास बना दिया है। बेशक 5 बार की विश्व चैंपियनशिप की मेडलिस्ट पीवी सिंधु और छुपेरुस्तम साबित हो रहे आयुष शेट्टी की चुनौती भले ही थम गई हो, लेकिन भारतीय बैडमिंटन की तस्वीर अब भी उम्मीदों से भरी है। युगल में भारतीय खिलाड़ी अब भी पदक की रेस में डटे हैं। दिल्ली की धरती पर अपने ही दर्शकों के सामने अब भारतीय शटलरों के पास हार की निराशा को पीछे छोड़कर नए जोश के साथ आगे बढ़ने का मौका है, क्योंकि चैंपियनशिप अभी बाकी है और भारत की उम्मीद

0: उम्मीदें भी। विश्व चैंपियनशिप के चौथे दिन महिला युगल में त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद का शानदार अभियान क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गया। त्रिशा गायत्री ने प्री क्वार्टर में आज जापान की रेन इवांगा और काई नाकानिशी की जोड़ी को 21-16, 21-12 से हराया। पहले गेम में भारतीय जोड़ी ने 21-16 से जीत हासिल की। दमदार स्मैश और बेहतरीन क्रॉस कोर्ट रिटर्न से दबदबा बनाए रखा। जापानी जोड़ी दूसरे गेम में बिल्कुल रिदम में नहीं दिखी, ज्यादातर शॉट गैलरी और बैक लाइन के बाहर गिरी। हालांकि त्रिशा गायत्री ने नेट पर कई अंक गंवाए भी। गायत्री ने माना मुकाबला काफी कड़ा था, शुरुआत में शॉट सही नहीं पड़ रहे थे।
1: इनिशियली was a pretty neck to neck, but then I think we looked to our coaches and they gave us some tips. So I think we were attacking a lot more in the second half of the first game and the second set. Yeah, it worked in our favor. दो तीन पॉइंट के बाद समझ आया कैसे खेलना है।
0: पहले गेम के बाद दूसरा गेम भारतीय जोड़ी के लिए आसान रहा। त्रिशा ने कहा कोच के गुरुमंत्र बेहद काम आए।
1: They gave us a few tips that were really helpful mentally and physically. We implemented it. He just told us to stay calm, focus on attack.
2: I think we just want to take it more focused and everything. We came here with a goal.
0: आपसी तालमेल के बारे में त्रिशा ने कहा कि अपनी कमजोरी और ताकत को बेहतर जानते हैं।
2: The rotation and the attacking, it's one of our strength. While playing also, it's really working. When we are leading also, like a little bit calm, because at this level, we need to be really calm and just be in that moment. Every point is matters.
0: महिला एकल में भारतीय स्टार शटलर पीवी सिंधु का सफर प्री क्वार्टर में चीन की वेंग जी के सामने थम जरूर गया, लेकिन रैंकिंग में अपने से बेहतर और उम्र में अपने से 5 साल युवा चीनी खिलाड़ी के खिलाफ सिंधु ने दिखा दिया कि 31 साल की उम्र में भी उनमें पुराना जोश और दमखम अभी बाकी है। सिंधु को 3 गेमों के कड़े मुकाबले में 21-11, 15-21, 21-17 से हार का सामना करना पड़ा। पहले गेम की शुरुआत में सिंधु पिछड़ रही थी, लेकिन रफ्ता रफ्ता उन्होंने रफ्तार पकड़ ली और स्कोर 7-7 कर दिया। लेकिन चीनी खिलाड़ी के तर्कश में विविधता भरे शॉट थे। पहला गेम वेंग जी ने 21-11 से जीत लिया। घरेलू दर्शकों के समर्थन ने सिंधु में नई ऊर्जा भर दी। दूसरे गेम में सिंधु का प्रभाव पूरे उफान पर था। उन्होंने 3-0 की बढ़त ली और फिर उसे 7-2 कर दिया। हालांकि वेंग ने वापसी की और स्कोर 15-15 की बराबरी पर ले आई, लेकिन सिंधु उस मिट्टी की नहीं बनी जो आसानी से हार मान ले। दूसरा गेम 21-15 से जीतकर उन्होंने मैच में वापसी की। निर्णायक गेम में कांटे की टक्कर हुई, 5 बार तो स्कोर बराबरी पर आ टंगा। पहले 9-9, फिर 13-13, फिर 15-15, 16-16 और 17-17। कोई हार मानने को तैयार नहीं था, लेकिन ऐसे में वेंग की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया। लेकिन मेडिकल ब्रेक के बाद वे फिर कोर्ट पर उतरी, लेकिन जल्द ही फिर इंजरी की शिकायत की, पर दर्द के बावजूद डटे रहने का फैसला किया और अंतिम 2 अंक लेने के बाद जीत हासिल कर कोर्ट पर लेट गईं। सिंधु ने माना मुकाबला बेहद कड़ा था, लेकिन उन्हें और संयम की जरूरत थी।
3: थोड़ा और पेशेंस रहना था मेरे साइड से। बहुत अच्छा चल रहा था गेम 1, गेम 2 और गेम 3 भी बहुत इक्वल चल रहा था। इन द ओवरऑल गेम लाइक स्पेशली इन द एंड, बिकॉज आई कांट सी एनी लूपहोल्स इन बिटवीन द पॉइंट्स, द लास्ट 3 पॉइंट्स जस्ट चेंज द गेम इज व्हाट आई फेल्ट। आई शुड हैव बीन लिटिल पेशेंट एंड दैट्स व्हाट आई कैन सी फ्रॉम टुडेस गेम। एंड व्हेन यू लूज यू नीड टू डील विद इट एंड बाउंस बैक स्ट्रॉन्गर फ्रॉम योर मिस्टेक्स।
0: पुरुष युगल में सात्विक रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी को प्री क्वार्टर में उतरने का मौका मिल ही गया। पहले दौर में उन्हें बाई मिला था और दूसरे दौर में स्कॉटलैंड की जोड़ी चोट के कारण हट गई थी। विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीत चुके सात्विक चिराग ने मलेशिया के जुनेदी आरिफ और येप रॉय किंग को 3 गेम के मुकाबले में 21-23, 21-19, 21-17 से हराया। रोमांच के शिखर तक पहुंचे मुकाबले के बाद दर्शकों का जोश पूरे आईजी स्टेडियम में गूंज उठा। सात्विक चिराग ने रोमांचक जीत के बाद अपनी प्रतिक्रिया में कहा,
4: जब भी हम कोर्ट पे जाने वाले थे पक्का सोचा था कि ऐसा होने वाला है, टफ होगा, इट वोंट बी इजी, थोड़ा कोर्ट कंडीशंस भी डिफरेंट रहेगा। वी वर रेडी फॉर इट, वी वांट प्लेइंग एट आवर बेस्ट, वी हैव टू प्ले द राइट काइंड ऑफ गेम, बिकॉज इफ यू कीप इट सिंपल इनसाइड द कोर्ट पॉइंट्स आएंगे। वी न्यू लाइक वी वांट प्लेइंग एट आवर बेस्ट, बट देयर हैव बीन सिचुएशंस इन द पास्ट वेयर वी हैव नॉट प्लेड एट आवर बेस्ट, बट वी हैव गॉट बैक एंड आई थिंक वी जस्ट try to tell each other that eventually things will turn into your favor, just keep it simple, keep it inside the court and don't really complicate things.
0: भारतीय खिलाड़ियों के अन्य मुकाबलों की बात करें तो युवा शटलर आयुष शेट्टी का स्वप्निल सफर प्री क्वार्टर में इंडोनेशिया के 11वीं वरीयता प्राप्त अलवी फरहान के सामने 21-19, 21-11 से थम गया। आयुष ने शुरुआत में 3 अंक बटोरकर अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद फरहान ने वापसी की और स्कोर 7-7 पर ले आए। दोनों खिलाड़ियों के बीच 1-1 अंक बटोरने को लेकर कड़ी जद्दोजहद चली। मैच पेंडुलम की तरह कभी आयुष और कभी फरहान के पाले में झूलता नजर आ रहा था। अंत में इंडोनेशियाई खिलाड़ी ने पहला गेम 21-19 से जीत लिया। दूसरे गेम में आयुष फरहान के बीच फिर कड़ी टक्कर हुई, लेकिन फरहान ने अंत

0: तय 21-11 के साथ दूसरा गेम और मैच अपने नाम कर लिया। आयुष ने माना कि पहले गेम में मौके थे लेकिन वह इसे भुना नहीं पाए।
1: He was playing really sharp today. I had my chances in the first game, couldn't convert it. And I think second game he was playing with more confidence and he was putting a lot of pressure from the net. I think that made the difference. Definitely he was not giving much chance, but I think when I had my chances, I was not really sharp getting the lines. That made a lot of difference, I would say. He played much better badminton and he was the better man.
0: आयुष के खिलाफ जीत हासिल करने वाले फरहान ने कहा,
2: I know Ayush have a lot of pressure because he play in a home show, right? That's why, I mean, I took that for my motivation and I'm just gonna be like, when I was leading, I'm just gonna be present and just think that only one by one. So I think that's the main point.
0: कहते हैं खेल में कोई हारता नहीं है, या तो जीतता है या सीखता है। विश्व चैंपियनशिप के मंच पर आयुष शेट्टी की तीसरे दौर में हार के साथ चुनौती जरूर टूट गई, लेकिन अपने पहले ही मुकाबले में दुनिया के नंबर एक शी युकी को हराने वाले भारत के इस युवा खिलाड़ी ने साबित कर दिया प्रतिद्वंदियों को उन्हें हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। मिश्रित युगल में ध्रुव कपिला और तनिषा की जोड़ी को चीन की दुनिया की छठे नंबर की जोड़ी गुआ चीन वा और चैन फेंग ने 21-16 21-5 से हरा दिया। इस जोड़ी ने माना कि वे चीनी जोड़ी की तेजी का सही ढंग से सामना नहीं कर पाए।
3: हमारे हाथ में बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं था, उन्होंने पूरा मैच काफी अच्छे से कंट्रोल किया था। यही कहना चाहूंगी, हमारे साइड से बहुत गलतियां हुई है, उनको काफी इजी पॉइंट्स मिल गए थे, हमने बहुत ज्यादा मिस्टेक्स किया, उसकी वजह से मैच ऐसा लगा कि उन्होंने बहुत इजीली मैच जीते हैं।
0: तनिषा ने कहा कि वे अपनी गलतियों पर काम करेंगे और मजबूत वापसी करेंगे।
3: इट्स सर्टेनली वेरी डिसअपॉइंटिंग दैट वी आर आउट ऑफ द वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, बट आई थिंक आई जस्ट लाइक टू टेल माय सेल्फ एंड ध्रुव दैट दिस इज नॉट द लास्ट मैच एंड दैट वी हैव सो मेनी मोर मैचेस टू गो। इट्स जस्ट एन एक्सपीरियंस, इट्स डिसअपॉइंटिंग, बट वी हैव मच बिगर इवेंट्स कमिंग अप। द ओनली थिंग आई कैन टेक बैक फ्रॉम दिस मैच इज अ लॉट ऑफ लर्निंग। वी गॉट टू गो बैक, वॉच आवर मैचेस, लर्न अ लॉट फ्रॉम इट एंड प्रिपेयर बेटर, कम बैक बेटर एंड आई एम श्योर देयर विल बी अ विन इन आवर बैग।
0: भारत के अलावा अन्य मुकाबलों की बात करें तो महिला एकल में दुनिया की नंबर एक दक्षिण कोरिया की एन से यंग ने डेनमार्क की मिया बिलिच फेल्टेट को 21-16 21-10 से हराया। पुरुष एकल में 2021 के विश्व चैंपियन सिंगापुर के लोह किन यू को कनाडा के विक्टर लाई ने 22-20 21-18 से पराजित कर दिया। पिछली विश्व चैंपियनशिप में विक्टर ने लोह किन को हराकर ही कांस्य पदक जीता था। पुरुष युगल में दुनिया की नंबर एक और पिछली चैंपियन जोड़ी दक्षिण कोरिया के किम हॉन हो और सो सुयुंग जो ने इंग्लैंड के बेन लेन और सीएन वेंडी को 21-13 21-16 से पराजित कर दिया। महिला एकल में पूर्व चैंपियन जापान की नोजोमी ओकुहारा ने भारतीय मूल की अमेरिकी खिलाड़ी इशिका जायसवाल को 21-11 13-21 21-12 से हरा दिया। इसके अलावा चौथे दिन डेनमार्क के रास्मस गेमके ने तीसरी वरीयता के जोनाथन क्रिस्टी को 11-21 21-13 21-18 से हराकर उलटफेर कर दिया। अब पांचवें दिन सात्विक चिराग का सामना क्वार्टर फाइनल में चीन के लियांग वेई कैंग और वांग चेंग से होगा, जबकि त्रिशा और गायत्री की भारतीय जोड़ी चीन की जिया यीफेन और झांगशु जियान के साथ खेलेगी। महिला एकल में दक्षिण कोरिया की एन शे यंग के सामने चीन की हान यूई होंगी और पुरुष एकल में एंडरसन का सामना जापान के कोदाई नाराओका से होगा। भारत की पदक की उम्मीदें अब युगल मुकाबलों पर है। देखते हैं अपनी मेजबानी में पदक के लिए जुगलबंदी कितनी कारगर रहती है। प्रोड्यूसर शाहनवाज खान, एडिटर वंदना भारद्वाज और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से मोहम्मद शाहिद आजमी की रिपोर्ट के साथ मैं नवीन कुमार शर्मा।

0: 잘해.
1: 아니 단점 아니 거울.
0: 뭐 단차?

गुड मॉर्निंग हैदराबाद, नमस्ते, हेलो आदाब दोस्तों। आप सुन रहे FM रेनबो 101.9। रेनबो के साथ लाइफ है रंगीन और मैं हूं आपका दोस्त आरजे जेडी। जी हाँ, म्यूज़िक से ही पहचान गए होंगे। पिछली बार मेरा म्यूज़िक मुझे मिला ही नहीं और बहुत प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि जब आप एक चीज़ को अटैच हो जाते हो, उसमें सिंक हो जाते हो ना, तो उसके बगैर रहना, अटैचमेंट्स के बगैर रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। तो दोस्तों, आज है फ्राइडे 21 अगस्त 2026 और स्टूडियो क्लॉक में हो रहा है 10:05 और अभी 6 मिनट। जी, एक ऐसा फ्राइडे जहाँ एक तरफ भक्ति है, एक तरफ ब्लेसिंग्स है, एक तरफ दुनिया को इंस्पायर करने वाले लोगों का बर्थडे है और दूसरी तरफ सिनेमा लवर्स के लिए फुल ऑन फ्राइडे मूवी मेनिया। आज का दिन एक खूबसूरत रिमाइंडर भी है कि लाइफ में कभी कभी हमें स्पीड चाहिए होती है, कभी सीनियर सिटीजन्स की विजडम, कभी फैमिली के ब्लेसिंग्स और कभी बस एक अच्छी फिल्म, एक अच्छा गाना और अपनों के साथ थोड़ा सा वक्त। जी हाँ दोस्तों, तो आज की सुबह एक छोटी सी दुआ के साथ शुरू करते हैं और मैं चाहता हूँ कि भगवान करे आपके घर में सुकून हो, आपके दिल में उम्मीद हो, आपके परिवार में खुशियाँ हों और आज का दिन आपके लिए कल से थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहे और खूबसूरत भी। और अगर आज आप वरलक्ष्मी व्रतम मना रहे हैं तो सबको ढेरों शुभकामनाएं, और अगर आप माँ लक्ष्मी से कुछ मांगना ही चाहते हैं तो धन के साथ साथ घर की सेहत, परिवार का प्यार, मन की शांति और सबके चेहरे की मुस्कान भी मांगिए, बिकॉज समटाइम्स द रिचेस्ट होम इज इन द वन विद द मोस्ट मनी, इट्स द वन विद द मोस्ट हैप्पीनेस। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए इसी पॉजिटिव थॉट के साथ शुरू करते हैं आज का दिन।

तो दोस्तों, मुझको पहचान लो। वैसे तो मैं डॉन नहीं, लेकिन आपका दोस्त ज़रूर हूँ। तो वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त आरजे जेडी, और आप सुन रहे हैं रेनबो 101.9। रेनबो के साथ लाइफ है रंगीन। तो दोस्तों, आज 21 अगस्त, और तेलुगु स्टेट्स में आज का दिन बहुत खास है। शायद आप जान चुके हो, आप पहचान चुके हो, क्योंकि आज है वरलक्ष्मी व्रतम या वरलक्ष्मी व्रत। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की परंपरा में आज कई घरों में माँ वरलक्ष्मी की पूजा हो रही है। और ये जगह है तिरुचूर में, तिरुचूर के श्री पद्मावती अम्मावारू टेम्पल। यहाँ पर भी वरलक्ष्मी व्रतम के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए हैं। टीटीडी के मुताबिक, यानी कि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के मुताबिक, व्रतम फ्राइडे मॉर्निंग 10 बजे से 12 बजे तक अस्थाना मंडपम में होगा, और शाम को पद्मावती अम्मावारू गोल्डन चैरियट यानी कि सुनहरे रथ पर डिवोटीज यानी कि भक्तों को दर्शन देंगी। वरलक्ष्मी मतलब माँ लक्ष्मी का वो रूप जो वर यानी बून मतलब वरदान देने वाली है। लेकिन मुझे लगता है आज हम माँ लक्ष्मी से एक सवाल भी पूछ सकते हैं। माँ, हमें सब कुछ मिल जाए, लेकिन उस सब को एन्जॉय करने के लिए सुकून भी मिलेगा? क्योंकि हम आजकल के ये तेज़ ज़िंदगी में, एकदम फास्ट रोबोटिक लाइफ में, हम सब कमा तो सकते हैं, लेकिन क्या उन सब कमाई को सुकून से आजमा सकते हैं? उन सबको हम जी सकते हैं? क्योंकि पैसा ज़रूरी है, लेकिन घर में बात करने वाले भी तो होने चाहिए।

आजकल के शॉर्ट फैमिलीज ऐसे हो गए हैं, सिर्फ माँ पापा और एक बच्चा, बस न दादा दादी, न मामा मामी, न चाचा चाची। हमेशा हर जगह पर ये देखा जा रहा है आजकल, तो इसीलिए और बड़े घरों में अगर साथ है तो लेकिन क्या हंसी है? बैंक बैलेंस हो लेकिन हेल्थ का क्या करें? जब आपके पास हेल्थ सही होगा तभी तो आप खुश रह सकते हो। तो इसीलिए माँ मेरे घर में धन के साथ धैर्य दीजिए, सफलता के साथ संतुष्टि दीजिए और जिंदगी के साथ सुकून दीजिए। जो लोग आजकल व्रतम कर रहे हैं, आप सबको FM रेनबो की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चलिए सुनते हैं एक खूबसूरत सा गाना और बढ़ाते हैं हमारी म्यूजिकल जर्नी को।

तो दोस्तों, आज एक और इंटरेस्टिंग ओकेशन भी है, वर्ल्ड सीनियर सिटीज़न डे। जी हाँ, सीनियर सिटीज़न यानी कि हमारे बड़े और बुज़ुर्ग। 21 अगस्त को वाइडली सीनियर सिटीजन्स डे के रूप में ऑब्ज़र्व किया जाता है।

यूनाइटेड स्टेट्स में नेशनल सीनियर सिटीजन डे के ऑफिशियल प्रोक्लेमेशन 1988 में हुई थी, लेकिन मेरे लिए सीनियर सिटीजन का मतलब सिर्फ एक एज ग्रुप नहीं है, सीनियर सिटीजन्स मतलब घर का गूगल। जी हाँ दोस्तों, आपको किसी पुरानी फैमिली स्टोरी का आंसर चाहिए, दादी से पूछो। किसी रिश्तेदार का 1975 का कनेक्शन चाहिए, दादी को जाके पूछ लो। पुराना रेसिपी नानी के पास ज़रूर रहेगा, और घर में कोई कहे ये तो पहले भी हुआ था, बस समझ जाइए हिस्ट्री डिपार्टमेंट एक्टिवेट हो गया। लेकिन जोक से पार्ट, आज की जनरेशन के पास इन्फॉर्मेशन बहुत है, लेकिन हमारे एल्डर्स के पास एक्सपीरियंस है। गूगल आपको बता सकता है कि पेशेंस का मीनिंग क्या है, लेकिन पेशेंस कैसा रहना चाहिए और कैसे रखते हैं वो ज़िंदगी सिखाती है, और वो ज़िंदगी हमारे सीनियर सिटीजन्स ने हमसे बहुत पहले जी ली थी। तो आज एक काम कीजिए, अपने घर के किसी एल्डर को कॉल कीजिए, बस एक सवाल पूछिए, आपकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन क्या है। विश्वास कीजिए, आपको वाकई में बहुत ही अच्छा मैसेज मिलेगा, और एक तरह से एक डायरेक्शन ज़रूर मिलेगा। हो सकता है उनका आंसर आपकी लाइफ का भी एक इम्पोर्टेंट लेसन बन जाए। तो जी हाँ दोस्तों, सारे हमारे बड़ों को और बुज़ुर्ग को हैप्पी सीनियर सिटीजन्स डे।

वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूँ आरजे जेडी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो 101.9। रेनबो के साथ लाइफ है रंगीन। तो दोस्तों, अब एक सीरियस और सेंसिटिव बात करते हैं। 21 अगस्त यानी कि 21 अगस्त को यूनाइटेड नेशंस का इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म ऑब्जर्व किया जाता है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 2017 में इस दिन को एस्टैब्लिश किया था विक्टिम्स और सर्वाइवर्स को ऑनर करने के लिए। टेररिज्म की न्यूज़ हम अक्सर टेलीविज़न पर एक हेडलाइन की तरह देखते हैं, नंबर्स सुनते हैं, इतने लोग जख्मी हुए हैं, इतने लोग मारे गए हैं, और फिर अगला न्यूज़ बुलेटिन आ जाता है। लेकिन उन नंबर्स के पीछे किसी का बेटा होता है, किसी की माँ होती है, और किसी का हस्बैंड या किसी की वाइफ, किसी का दोस्त और किसी किसी के बच्चे होते हैं। इसीलिए आज का दिन सिर्फ रिमेम्बरेंस का दिन नहीं, ह्यूमैनिटी को याद करने का दिन है। विक्टिम्स और सर्वाइवर्स, जी हाँ, ये शायद हम इतना ज़्यादा इनके बारे में सोचते नहीं हैं, लेकिन जब नाम, जब ये वर्ड आता है विक्टिम, और ये एक और वर्ड सर्वाइवर, इन इनकी भी एक ज़िंदगी होती है, और इन्होंने कितने कितने झेले हैं अपने लाइफ में कि इनको ये नाम दिया गया है विक्टिम करके। तो विक्टिम्स एंड सर्वाइवर्स की डिग्निटी, राइट्स और लॉन्ग टर्म सपोर्ट को रिकॉग्नाइज करना भी इसका इम्पोर्टेंट पर्पस है। हम रेडियो पर एक सिंपल मैसेज दे सकते हैं, हिंसा किसी प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, और पीस का मतलब सिर्फ वॉर का एब्सेंस नहीं, पीस का मतलब है एक दूसरे को इंसान समझना। जी हाँ, आजकल के ज़माने में वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात हो चुकी है, क्योंकि इंसान को हम इंसान नहीं समझते।

क्योंकि हम बहुत सेल्फिश हो जाते हैं कि हम खुद को इंसान मानते हैं और आगे वाले को पता नहीं क्या। तो इसीलिए आज उन सभी विक्टिम्स और सर्वाइवर्स को हम रेस्पेक्ट के साथ याद करते हैं। मे देयर फैमिलीज फाइंड स्ट्रेंथ, हीलिंग एंड पीस।

ये गाना है आओ ना, फ्रॉम साधना सरगम, उदित नारायण और शंकर जी। और ये मूवी है क्यों हो गया ना जी, ये मूवी का नाम है, बहुत खूबसूरत सा गाना है आओ ना। चलिए सुनते हैं।

दोस्तों, व्हाट्सएप पे कोई कोई कुछ मैसेजेस आई हैं। चलो पढ़ते हैं। और आप भी हमें मैसेज कर सकते हैं। मैं नंबर आपको बता दूं, 4023234822। एक और बार दोहरा देता हूँ, 4023234822। आप हमें इंस्टेंट मैसेजेस कर सकते हैं। आपका कुछ बात शेयर करनी हो या आपका कोई सॉन्ग की फरमाइश हो, आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। और हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं सरवर अली जी। वो कहते हैं, गुड मॉर्निंग जेडी सर। बहुत गुड मॉर्निंग सर। सर, जिंदगी जिंदगी हो या साइकिल का चेन। अच्छा, तो लेकिन चेन होना ज़रूरी है। सर, जिंदगी हो या साइकिल, चेन होना ज़रूरी है। जी हाँ सर, दोनों भी चेन अलग-अलग है, लेकिन दोनों भी बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया सर, आप हमें सुन रहे हैं। और ये हमें भेजते हैं एक पुराने रेडियो की फ़ोटो जिससे वो सुन रहे हैं। और हमारे साथ जुड़े हैं जतिन कृष्णा। और वो कहते हैं, जेडी भैया, प्लीज़ प्ले दिस सॉन्ग फॉर मी, एक मुलाकात। जी ज़रूर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग हमें सुन रहे हैं और आप हमें इतना प्यार देते हैं। और आई एम नॉट श्योर कौन सा एक मुलाकात, शायद क्या वो मीट ब्रोस का है। चलिए मीट ब्रोस का एक मुलाकात सुनते हैं।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

नमस्ते, हेलो, आदाब दोस्तों। मैं हूँ आरजे जेडी और आप सुन रहे एफएम रेनबो। रेनबो के साथ लाइफ है रंगीन, ओनली ऑन एफएम रेनबो 101.9। तो दोस्तों, हमने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही अभी तक। चलो, अभी हम हमारी बातों का सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, मुझे ये कहना होगा, ऑन योर मार्क्स गेट सेट एंड गो, नहीं बोल्ट। जी हाँ, आज दुनिया के फास्टेस्ट मैन में से एक, यूसेन बोल्ट, 40 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, आज उनका बर्थडे है। वर्ल्ड एथलेट्स कंफर्म करते हैं कि बोल्ट वॉज बॉर्न ऑन 21 अगस्त 1986 एंड लिस्ट्स हिम एज ए 8-टाइम ओलंपिक चैम्पियन, 11-टाइम वर्ल्ड चैम्पियन एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर इन 100 मीटर्स, 200 मीटर्स। उनका 100 मीटर का रिकॉर्ड 9.58 सेकेंड्स, 200 मीटर्स का 19.19 सेकेंड्स। नंबर्स सुनने में छोटे लग सकते हैं, लेकिन उन सेकेंड्स के पीछे सालों की ट्रेनिंग थी, और यही बोल्ट की स्टोरी का इंटरेस्टिंग पार्ट है। हम सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, प्रिपरेशन नहीं। हम मेडल देखते हैं, सैक्रिफाइस नहीं। हम फिनिश लाइन देखते हैं, स्टार्टिंग लाइन नहीं। और लाइफ भी कुछ ऐसे ही है। किसी को देखकर कभी मत सोचिए, यार इसका तो सब सेट है, ये तो मस्त है, ये तो बेस्ट है। लेकिन ये सेट, मस्त और बेस्ट होने के लिए कितनी मेहनत है इसके पीछे, ये उन्हीं को पता है। जब आपको तो आज बोल्ट का एक कहना है कि वो 9 सेकेंड्स दौड़ने के लिए 4 साल प्रैक्टिस किए है। सुन रहे हो, 9 सेकेंड्स। वो 9 सेकेंड्स दौड़ने के लिए बोल्ट ने 4 साल मेहनत किए है। और आपकी लाइफ, आपको स्पीड चाहिए या मैं ये बोल्ट के बर्थडे के दिन आपको एक सवाल पूछता हूँ, सिंपल सा। आपको लाइफ में स्पीड चाहिए या कंसिस्टेंसी? मेरा आंसर है दोनों, क्योंकि अगर स्पीड एक दिन खत्म हो जाए, कंसिस्टेंसी आपको फिनिश लाइन तक ले जा सकती है। हैप्पी 40th बर्थडे लाइटनिंग बोल्ट।

वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरजे जेडी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 101.9। रेनबो के साथ लाइफ है रंगीन। तो दोस्तों, अभी बात करते हैं हम बर्थडेज के बारे में। आज बर्थडे है तेलुगु सिनेमा लवर्स की एक बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस भूमिका चावला। जी, भूमिका चावला का जन्म 21 अगस्त 1978 को न्यू दिल्ली में हुआ था। उन्होंने तेलुगु सिनेमा से अपना फिल्म करियर स्टार्ट किया और युवकड़ू के बाद खुशी ने उन्हें हाउसहोल्ड नेम बना दिया। और फिर आई तेरे नाम, सलमान खान के ऑपोजिट उनका रोल, सिंपल, सॉफ्ट, इमोशनल और अनफॉरगेटेबल था। भूमिका की एक खास बात ये रही कि उन्होंने सिर्फ एक लैंग्वेज तक खुद को लिमिट नहीं किया। तेलुगु, तमिल, हिंदी, मलयालम, कन्नड़ा, पंजाबी और भोजपुरी जैसे मल्टीपल इंडस्ट्रीज में काम किया और शायद इसी वजह से उनकी स्क्रीन प्रेजेंस आज भी नॉस्टैल्जिक लगती है। कभी कभी कुछ एक्टर्स को देखकर हमें फिल्म याद नहीं आती, अपनी लाइफ का एक फेस याद आता है। स्कूल का दिन, कॉलेज के दिन, फर्स्ट क्रश, फर्स्ट मूवी डेट या वो टाइम जब एक फिल्म के सॉन्ग्स कैसेट्स या सीडी पर सुनते थे। भूमिका चावला उन्हीं फेसेस में से एक है। तो आज उनके बर्थडे पर आपकी फेवरेट भूमिका चावला प्रेजेंस का एक खूबसूरत सा गाना सुनते हैं। और वैसे आपका कौन सा मूवी फेवरेट है इनका, खुशी, तेरे नाम या मैसम्मा या ओकोडू? कॉल कीजिए यानी तो मैसेज कीजिए। और चलिए थोड़ा सा 2000 में वापस चलते हैं और सुनते हैं ये उनका खूबसूरत सा गाना फ्रॉम द मूवी तेरे नाम, उदित नारायण का और अलका याग्निक का।

वेलकम बैक दोस्तों। अब बर्थडे लिस्ट में एक आवाज जिसको सुनते ही पार्टी मूड ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, कनिका कपूर। कनिका कपूर का जन्म 21 अगस्त 1981 को लखनऊ में हुआ था और उनका ब्रेक थ्रू बेबी डॉल, किस किस को नहीं पता ये गाना। इतना धमाकेदार, इतना सुपर हिट सॉन्ग था ये उस टाइम का जब ये रिलीज़ हुआ था। बेबी डॉल के बाद कनिका कपूर की वॉइस बॉलीवुड पार्टी म्यूज़िक का एक फेमिलियर साउंड बन गई। फिर आया चिट्टिया कलाइया, जी हाँ। और जैसे ही बीट स्टार्ट होती है, किसी ना किसी शादी में डांस फ्लोर ऑटोमेटिकली भर जाता है। उनकी जर्नी इंटरेस्टिंग इसीलिए भी है क्योंकि क्लासिकल म्यूज़िक की ट्रेनिंग उन्होंने बचपन से ही शुरू कर दी थी। यानी जो आवाज़ हमें पार्टी सॉन्ग्स के साथ याद आती है, उनके पीछे क्लासिकल ट्रेनिंग भी है और म्यूज़िक की यही ब्यूटी है। कभी एक गाना आपको डांस करवाता है, कभी वही म्यूज़िक आपको इमोशनल कर देता है और रुला देता है, और कभी एक पुराना सॉन्ग बस एक सेकंड में आपको किसी पुरानी याद में ले जाता है। तो आज कनिका कपूर के बर्थडे पर मेरा सवाल, आपके लिए वो एक गाना कौन सा है जो बजते ही मूड चेंज कर देता है? सैड हो तो हैप्पी कर देता है, हैप्पी हो तो सैड कर देता है, और जो भी हो बोरिंग फ्राइडे को मज़ेदार बना देता है। तो जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ हम सुनते हैं उन्हीं का एक बहुत ही सुपर हिट गाना, चिट्टिया कलाइया।

वेलकम बैक दोस्तों। आज से एग्जैक्टली 115 साल पहले आज के दिन 21 अगस्त 1911 1911 में पेरिस के लोवरे म्यूजियम से एक पेंटिंग गायब हो गई थी। उसका नाम मोना लिसा। जी हाँ, द फेमस मोना लिसा, लियोनार्डो डाविंची की दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग्स में से एक। मोना लिसा 21 अगस्त 1911 को लोवरे से चुरा लिया गया था म्यूजियम से। नेक्स्ट डे मिसिंग होने का पता चला और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पाब्लो पिकासो तक से क्वेश्चनिंग की गई। सोचिए, आज के ज़माने में म्यूजियम से एक पेंटिंग चोरी हो तो सीसीटीवी, सिक्योरिटी अलार्म्स, सोशल मीडिया सब कुछ एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन 1911 उस टाइम में सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट था। द पेंटिंग सिंपली डिसअपियर्ड। नोबडी नोस वेयर इट इज, नोबडी नोस हाउ टू फाइंड इट, और दुनिया को पता ही नहीं था कि वो कहाँ है। इस थेफ्ट ने मोनालिसा को और भी फेमस बना दिया और इंटरेस्टिंगली पेंटिंग रिकवर होने में 2 साल से ज़्यादा लग गए। जी हाँ, 2 साल से ज़्यादा लोगों ने कड़ी मशक्क़त की इस पेंटिंग को ढूंढने के लिए, क्योंकि इतनी इतनी वैल्यूबल और इतनी कीमती थी ये। और एक फन क्वेश्चन, अगर आपके घर से कोई एक चीज़ चोरी हो जाए तो आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ का दुख होगा? गोल्ड, मोबाइल, डॉक्यूमेंट्स या पुरानी फैमिली फ़ोटोज़? मेरे लिए तो फैमिली फ़ोटोज़, क्योंकि कुछ चीज़ों की मार्केट वैल्यू नहीं होती है, लेकिन मेमोरीज की यू नो, कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती है। चाहे आप सोना फिर से खरीद सकते हैं, मोबाइल डेफिनेटली खरीदेंगे ही, और डॉक्यूमेंट्स का क्या है, वो बन जाएंगे वापस। लेकिन मेमोरीज अगर मिट जाती है तो वो दुख हमेशा के लिए रहता है, और आप वो जो खोई हुई या नहीं तो आपने जो जो गुम हुई मेमोरीज को बिल्कुल भी नहीं रिकवर कर सकते हैं। और मोनालिसा की स्टोरी हमें एक इंटरेस्टिंग

वेलकम बैक दोस्तों। इतने खूबसूरत खूबसूरत गाने हम सुन रहे हैं और इतने खूबसूरत मैसेजेस आप सेंड भी कर रहे हैं। हमें मैसेज करते हैं चंद्रनाथ फ्रॉम KPHB। ये कहते हैं, गुड मॉर्निंग JD, आपके गानों का सिलेक्शंस बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छे हैं। बहुत बहुत थैंक यू। देखिए, यहाँ पर गाने ना दो ही तरह के चलते हैं, या तो मेरा फेवरेट या फिर आपका फेवरेट। जी हाँ, और इसी से होता है हमारा फेवरेट। तो जी, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रनाथ जी। आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 4023234822 पर। और चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, आज है फ्राइडे नाइट, यानी कि मूवी मेनिया, थिएटर का वीकेंड प्लान। फ्राइडे आ गया है हैदराबाद और इसका मतलब है एक ही चीज़, फ्राइडे मूवी मेनिया। आज थिएटर में रवितेजा की इरुमुड़ी और अमीर लोग ऑडियंस के सामने हैं। तो सवाल है, इस वीकेंड आपकी चॉइस क्या होगी? इरुमुड़ी एक इंटेंस फैमिली ड्रामा है जहां रवितेजा का कैरेक्टर अपनी डॉटर के साथ एक इमोशनल जर्नी से गुजरता है। अमीर लोग मीनवाइल हैज अ मोर ग्राउंडेड कमिंग ऑफ ऑल एज फ्लेवर्स। जी हाँ, और जो लोग ऑलरेडी थिएटर्स में चल रही फिल्म्स देखने का प्लान बना रहे हैं, उनके लिए आवारापन 2 भी डिस्कशन में है। इमरान हाशमी की रिटर्न को नॉस्टैल्जिया और परफॉर्मेंस के लिए अप्रिसिएशन मिल रहा है। ऑल दो रिव्यूज राइटिंग और लेटर पोर्शंस पर डिवाइडेड है, लेकिन इमरान हाशमी का कमबैक, यानी कि हम सबके फेवरेट, और उनके गाने आए हाय। और रही बात विश्वनाथ एंड सन्स, फैमिली ऑडियंस के लिए एक ऑप्शन है ये वाली मूवी, वाइल खलीफा एक्शन लवर्स के लिए। और रही बात मार्वल की, स्पाइडरमैन मूवी अभी भी कुछ थिएटर्स में चल रही है, कुछ कुछ लोग तो उसको चार चार पांच पांच बार देख रहे हैं, और मैंने खुद ही नहीं उसको 2 बार देखा है। बहुत ही अच्छी मूवी है। एंड सबसे धमाकेदार न्यूज़ ये है कि मिर्ज़ापुर द मूवी, जी हाँ, कालीन भैया, गुड्डू पंडित, मुन्ना भैया, ये जो कैरेक्टर्स हैं हमने OTT पर देखे हैं, वो अब बड़े पर्दे पर आ रहे हैं। ट्रेलर अगस्त 11 को रिलीज हो चुका है और फिल्म 4 सितंबर को थिएटर्स में आ रहा है। तो मिर्ज़ापुर फैंस,

एक सवाल, कालीन भैया, गुड्डू या मुन्ना, आपका फेवरेट कौन है? और ओवरऑल वीकेंड के लिए थिएटर्स जाना है या ओटीटी पर घर बैठे मूवीज देखना है? एंड रही बात मिर्ज़ापुर का जो बीजीएम है, उसका जो म्यूजिक, वो एक एक इमोशन है, वो एक म्यूजिक नहीं। तो दोस्तों चलिए हम म्यूजिकल सफर को आगे बढ़ाते हैं, और मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर मैसेज करते हैं वीरेश, और बोलते हैं इमरान हाशमी की मूवी आवारापन 2 इन्होंने देखी है, और मूवी बहुत ही अच्छी है। जो भी इमरान हाशमी के फैंस हैं उनके लिए बहुत अच्छी है, लेकिन आवारापन जो पार्ट 1 है उसका तो कोई कंपटीशन नहीं। अच्छा जी हाँ, समझ गए। आवारापन का अगर कंपेयर करें, पार्ट 1 बहुत अच्छी लगी इनको पार्ट 2 से। सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं। ये जानने के लिए एक काम करना पड़ेगा, थिएटर जाइए और मूवी देखिए और खुद समझिए। अभी मैं गाना बजाने वाला हूँ आफरीन आफरीन। कुछ लोगों का तो ये बहुत ही फेवरेट गाना है, और उन कुछ लोगों में से मैं भी एक हूँ। गाया है राहत फतेह अली खान ने। तो इसका क्लासिक वर्जन पुराना वाला नुसरत फतेह अली खान का भी है, वो भी बहुत ही खूबसूरत गाना है, और ये उसके बाद का आया हुआ राहत फतेह अली खान का है। और मेरा फेवरेट तो राहत फतेह अली खान का है। आपका फेवरेट कौन सा है?

वेलकम बैक दोस्तों। इतना इतना प्यारा गाना यार, मुझे बहुत पसंद है। ये गाना को मैं शायद मोर देन मिलियन टाइम्स सुन चुका हूँ। एक टाइम था जहाँ पर मैं ये गाने को रिपीट पे सुनता था। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं एक एक स्पेशल चीज़, ताकि आपको एक बात पता चले। हैदराबाद के बिजी सिटी लाइफ से ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ एक जगह के बारे में जहाँ पर आप जा सकते हैं, जिसको मैं मानता हूँ एक हिडन जर्म है। और दोस्तों, वैसे तो 12 बजे को न्यूज़ आएगा, तो जी हाँ, उससे पहले मैं आपको इस जगह के बारे में बता दूँ, फिर हम सुनेंगे न्यूज़। तो दोस्तों, आज ऐसी ही एक हिडन जेम की बात करते हैं। शमशाबाद के पास नरखुदा में है स्वर्ण शिल्पी विवेकानंदा काली मंदिर। जी हाँ, ये है तो एक मंदिर। दूर से देखने तो एक पल के लिए लगता है, इसको जब देखते हैं तो हैदराबाद से हम कोलकाता पहुंच गए। जी हाँ, जैसे ही हम इसको देखते हैं तो हमको

लगता है कि हम कोलकाता पहुंच गए। कारण क्योंकि ये टेंपल फेमस कोलकाता का दक्षिणेश्वर काली मंदिर का सेम टू सेम इंस्पायर्ड रेप्लिका है। इस टेंपल को बंगाली स्वर्णशिल्पी कम्युनिटी ने डेवलप किया। यहाँ माँ काली के साथ गणपति, राधा कृष्ण, शिवजी और वेंकटेश्वरा का भी मूर्ति है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, हैदराबाद सिटी से ये ज़्यादा दूर नहीं, शमशाबाद के पास ही है। और इतना खूबसूरत फोटोजेनिक जगह है, बहुत मस्त है।

सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक चल रही है। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और लचीले डिजिटल बुनियादी ढांचा में सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लाभ छोटे और सीमांत किसानों सहित सभी किसानों तक पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें एक पहल प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले कई वर्षों में इस योजना के तहत बजट आवंटन में काफी वृद्धि हुई है। योजना के अंतर्गत 2024-25 में वास्तविक खर्च लगभग 5,400 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2026-27 में बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करेगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पत्र के साथ एक पोस्ट साझा की। पत्र में श्री वैष्णव ने बताया कि शहीद कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर के रास्ते जम्मू तवी और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस को मंजूरी दे दी गई है। इससे संपर्क सुविधा बेहतर होगी और रेल यात्रा अधिक सुविधाजनक बनेगी। दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने अंतर्राज्यीय डिजिटल अरेस्ट साइबर धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ कर पंजाब और राजस्थान से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां भारतीय सेना के एक सेवानिवृत्त कर्नल से 15 लाख रुपए से अधिक की कथित ठगी के मामले में की गई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 स्मार्टफोन और 6 सिम कार्ड भी बरामद किए हैं। मुंबई के कुर्ला पूर्व इलाके में आज तड़के एक क्रेन के घरों पर गिर जाने से 8 लोग घायल हो गए। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने बताया है कि घटना के बाद घायलों को अस्पताल ले जाया गया। सभी घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आज सुबह इस्लामाबाद के एक निजी अस्पताल में चिकित्सकीय जांच के बाद रावलपिंडी की अदियाला जेल वापस भेज दिया गया। उन्हें आधी रात के बाद शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाया गया था। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2 दिन के भीतर अस्पताल ले जाने का निर्देश दिया था। इमरान खान को भ्रष्टाचार समेत कई मामलों में 5 अगस्त 2023 को गिरफ्तार किया गया था। तब से वे रावलपिंडी की अदियाला जेल में हैं। ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है। अमरीका के वित्त विभाग ने 10 ऐसे लोगों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है जिन पर हिजबुल्ला को धन अंतरित करने के लिए जिम्मेदार नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है। सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 4 दिन में 2 जहाजों का अपहरण कर लिया है। खबरों के मुताबिक लुतुफ में तुर्की के हथियार और उपकरण थे, जिन्हें मोगादिशु में एक सेना प्रशिक्षण केंद्र ले जाया जा रहा था। लुतुफ के 10 लोगों के चालक दल में 6 भारतीय, 1 तुर्की नागरिक, 1 जॉर्जियाई और 2 सर्बियाई सुरक्षा गार्ड शामिल थे। जम्मू कश्मीर में स्कूल शिक्षा विभाग ने अपने कर्मचारियों के लिए व्यापक स्थानांतरण नीति अधिसूचित की है। इसका उद्देश्य तबादलों और नियुक्तियों में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता लाना है। सरकार ने कहा है कि इस नीति का समग्र उद्देश्य विशेष रूप से दूरस्थ और कम सुविधा प्राप्त क्षेत्रों में मानव संसाधनों का संतुलित उपयोग, कर्मचारियों का समान वितरण, कुशल प्रशासन और निर्बाध शैक्षणिक कार्य संचालन सुनिश्चित करना है। घरेलू शेयर बाजार में आज मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 77 अंक बढ़कर 77,615, जबकि निफ्टी 21 अंक की वृद्धि के साथ 24,253 पर कारोबार कर रहा था। एफआईएच हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार अमस्टरडैम में रात 9:30 बजे शुरू होगा।

की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत आज जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक होगी। दो दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

तो दोस्तों, न्यूज़ से पहले हम बात कर रहे थे एक हिडन जर्म के बारे में, जो कि है हैदराबाद के शमशाबाद के पास। बहुत ही खूबसूरत जगह है, वहाँ पर एक मंदिर है जो कि डिट्टो रेप्लिका है कलकत्ता के दक्षिणेश्वर मंदिर का, जो कि यहाँ पर हैदराबाद के शमशाबाद में बनाया गया है। और आजकल हम वीकेंड गेटवे का नाम पर बहुत दूर चले जाते हैं, लेकिन कभी-कभी हैदराबाद के आसपास ही कोई ऐसी जगह होती है जो हमें देखी ही नहीं। तो हैदराबाद वालों, आपके एरिया में भी कोई हिडन जेम है? कोई ओल्ड टेंपल, कोई तालाब, हेरिटेज बिल्डिंग, या नहीं तो हम सबका फेवरेट फूड प्लेस या पीसफुल स्पॉट? हमें बताइएगा ताकि वो किसी और का हिडन जेम बन जाए। तो जी हाँ दोस्तों, तो अभी हम बात करेंगे, आज तो वैसे है फ्राइडे और कल है सैटरडे, परसों संडे, मतलब वीकेंड ऑफिशियली रेडी है। तो हैदराबाद, आपका वीकेंड प्लान क्या है? मूवी, फिल्म, या फैमिली के साथ आउटिंग, फ्रेंड्स के साथ डिनर, या लंच भी कर सकते हैं, टेंपल विजिट, शॉपिंग, या नहीं तो लॉन्ग ड्राइव, या फिर वो क्लासिक प्लान, कुछ प्लान नहीं है, घर पे ही रहेंगे। और ऑनेस्टली, कभी-कभी वही बेस्ट प्लान हो लगता है, एक कप चाय, या जिनको कॉफी पसंद, एक कप कॉफी, जो मुझे भी बहुत पसंद, अपना फेवरेट फूड या स्नैक, और टीवी पर बैठकर बस ओटीटी ओपन करके कोई ना कोई सीरीज को

बिंज वॉच करना, चाहे वो कोरियन हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो कोई भी हो. और हाँ, फोन साइलेंट करना ज़रूर मत भूलिएगा. लाइफ में हर वीकेंड प्रोडक्टिव होना ज़रूरी नहीं, कभी कभी वीकेंड को बस सो सकते हैं यार, बस आराम कर सकते हैं. तो दोस्तों, 12 बज चुके हैं. अगर आपको याद है तो मैं 12 बजे के बाद मैं सबको एक कहानी सुनाता हूँ. आज की कहानी मैं सुनाने वाला हूँ अभी थोड़े से अनोखे अंदाज में. और आज की कहानी का नाम है सीट नंबर 25. उसको मैं सुनाने से पहले कुछ मैसेजेस पढ़ लूँ. यहाँ पर मैसेज करते हैं हुदा बाबा नगर से. हाय आरजे जेडी, कैसे हैं आप? यहाँ या भी क्या जिंदगी है. मैं उसके ससुराल में, वो मेरे ससुराल में बैठी है. एक सॉन्ग लगाइए ना प्लीज़, सैयारा मूवी से. ज़रूर हुदा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. आप हमें सुन रहे हैं, आपका इतना प्यार हमें पहुंचता है, बहुत बहुत धन्यवाद. और हमें मैसेज करते हैं और हुदा जी ये भी बोलते हैं कि सभी सुनने वालों को जुम्मा मुबारक. जी हाँ, आपको भी. और यहाँ पर मैसेज करते हैं गना, स्पीकिंग फ्रॉम बेंगलुरु. आई हैव ए सॉन्ग रिक्वेस्ट फॉर यू, कभी कभी मेरे दिल में, फ्रॉम द मूवी कभी कभी. जी ज़रूर गना जी, मैं ज़रूर इसको बजाऊंगा मेरे अगले सेगमेंट में, जो कि पूरा का पूरा रेट्रो सॉन्ग्स ही बजेंगी. और हमें यहाँ पर मैसेज करते हैं फिर से सरवर अली जी ने हमको एक फ़ोटो भेजा है पुराने रेडियो की. और ये वाला रेडियो पहले वाले रेडियो से थोड़ा अलग है और ये बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़ा है ये. और बहुत शुक्रिया सरवर अली जी, सबको गुड आफ्टरनून कहते हैं ये. और यहाँ पे करते हैं योर नेम इज़ सो नाइस जेडी, ये करते हैं शेखर जी. शेखर जी बहुत बहुत शुक्रिया. और ये मैसेज कर रहे हैं हमको मेहदीपट्टनम से. और कहते हैं जयदीप, नेम इज़ सो नाइस जेडी शॉर्ट फॉर्म. थैंक यू सो मच शेखर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. आप सभी का प्यार हमको और ज़्यादा खुशी कर देता है. और हम जब खुश हो जाते हैं तो हम बहुत अच्छे अच्छे गाने बजाते हैं. खैर, हम खुश नहीं है तो भी हम अच्छे अच्छे गाने बजाएंगे. और अगर हम आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं तो कैसे खुश नहीं होंगे भला. तो जी हाँ दोस्तों, अभी हम शुरुआत करते हैं हमारे कहानी का. तो आज की कहानी है दो दोस्तों की. तो चलिए सुनते हैं क्या होता है कहानी में.

दोस्तों, इस कहानी का नाम है सीट नंबर 25, वो दोस्त जो हमेशा साथ था। दोस्तों, कॉलेज की दोस्ती अजीब होती है। ना कोई ऑफिशियल रिश्ता, ना कोई प्रॉमिस, ना कोई कागज, फिर भी कभी कभी एक दोस्त आपकी लाइफ में फैमिली से भी ज्यादा क्लोज हो जाता है। आरव और मीरा ये भी ऐसे ही दोस्त थे। दोनों की फर्स्ट मीटिंग कोई फिल्मी सीन नहीं था, ना बारिश, ना स्लो मोशन, ना बैकग्राउंड में रोमांटिक म्यूजिक, बस एक नॉर्मल सा कॉलेज क्लासरूम था और एक लड़की जो अपनी ही सीट भूल गई थी। मीरा, एक्सक्यूज मी, ये सीट नंबर 24 है ना? आरव ने कहा। हाँ, तो आप 25 पर क्यों बैठे हो? आरव ने कहा, क्योंकि मेरी सीट 25 है। ओह, तो 24 मेरा है? आरव ने कहा, अगर आपका नाम मीरा है तो हाँ। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? आरव ने बोला, अटेंडेंस शीट उल्टी पकड़ी हुई है आपने। बस यहीं से शुरू हुई थी उनकी दोस्ती। पहले अटेंडेंस पार्टनर, फिर नोट्स पार्टनर, फिर कैंटीन, और देखते देखते एक दिन ऐसा आ गया जब दोनों को एक दूसरे से बात करने के लिए किसी रीजन की जरूरत नहीं पड़ती थी। आरव, हाँ, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना? आरव ने बोला। अचानक? बस पूछ रही हूँ। आरव ने बोला, हाँ, तो एक बात पूछूं? पूछो। अगर कभी मैं किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई तो तू मेरा साथ रहेगा? आरव ने कहा, बिना पूछे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। उन्हें क्या पता था कि कुछ साल बाद यही एक प्रॉमिस उनकी पूरी लाइफ बदलने वाली थी। फाइनल ईयर शुरू हो चुका था, प्लेसमेंट्स आने

लग गए थे। सब अपनी अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे थे और मीरा अपने पेपर के बारे में। उसके पापा एक छोटी सी शॉप चलाते हैं। पैसे ज्यादा नहीं थे लेकिन बेटी की पढ़ाई के लिए उन्होंने कभी उसे किसी चीज की कमी महसूस होने ना दी। एक शाम मीरा और आरव कॉलेज के सीढ़ियों पर बैठे थे। आरव, शायद मैं MBA नहीं कर पाऊंगी, आरव ने कहा। क्यों? पापा का बिजनेस ठीक नहीं चल रहा, लोन है, घर का खर्चा है, मैं जॉब कर लूंगी, आरव ने कहा। तू MBA करेगी? पैसे कौन देगा? आरव ने कहा। देख लेंगे। देख लेंगे? देख लेंगे बोलने से पैसे नहीं आते, आरव ने कहा। लेकिन रास्ते निकल आते हैं। तू हमेशा इतना कॉन्फिडेंस कैसे रहता है? आरव ने कहा। क्योंकि तू बहुत पैनिक करती है, इडियट। थैंक यू। कुछ दिन बाद मीरा का फोन बजा। उसके चेहरे से खुशी अचानक गायब हो गई। पापा हॉस्पिटल में हैं, आरव। क्या हुआ? फोन पर प्रॉपरली बताया नहीं, बस बोले जल्दी आओ। आरव ने बाइक निकाली, दोनों हॉस्पिटल पहुंचे। मीरा के पापा ICU में थे। कुछ घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने कहा ट्रीटमेंट लंबा चलेगा और खर्चा बहुत ज्यादा होगा। मीरा हॉस्पिटल कॉरिडोर में बैठ गई और पहली बार आरव के सामने रो पड़ी। मैं क्या करूं? आरव ने कहा। कुछ नहीं, अभी कुछ मत सोच। पैसे कहां से आएंगे? आरव ने कहा। मैं देखता हूं, तू क्या करेगा? मैंने कहा ना, मैं देखता हूं। अगले 3 दिन आरव लगातार हॉस्पिटल में ही था, लेकिन 4th दिन वो अचानक गायब हो गया। मीरा ने कॉल किया, एक बार, दो बार, 10 बार फोन स्विच्ड ऑफ, और फिर एक मैसेज आया। मीरा, अब मुझे कॉल मत करना, बस इतना। मीरा कुछ सेकंड बस फोन देखती रही। फिर एक और मैसेज आया। मैं इस सब में और नहीं पढ़ सकता। मीरा के आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दर्द के साथ गुस्सा भी था। उसने रिप्लाई किया, तूने प्रॉमिस किया था। कुछ सेकंड बाद रिप्लाई आया, प्रॉमिसेस बच्चों के लिए होते हैं। उस रात मीरा ने पहली बार आरव को अपना दोस्त नहीं, एक स्ट्रेंजर समझा। लेकिन कहानी में सबसे डेंजरस झूठ वो नहीं होता जो किसी ने बोला हो। सबसे डेंजरस झूठ वो होता है जो हम पूरी सच्चाई जाने बिना खुद से कह देते हैं। और मीरा ने उस रात अपने माइंड में एक स्टोरी बना ली थी कि आरव ने उसे छोड़ दिया, लेकिन सच अभी बाकी था।

0: नहीं झूठ मत बोल, मैं सच बोल रहा हूँ, तो मीरा ने बोला। उसने मुझे छोड़ दिया, मेरे पापा हॉस्पिटल में थे और उसने कहा मैं इस सब में नहीं पढ़ सकता। कबीर ने बोला, मीरा जो तुझे दिख रहा है वो पूरी स्टोरी नहीं है। तो पूरी स्टोरी क्या है? कबीर ने बोला, मुझे नहीं पता। तो फिर कोई उसका डिफेंस क्यों कर रहा है? कबीर ने बोला, क्योंकि शायद आरव ने कुछ ऐसा किया है जो वो तुझे बताना नहीं चाहता। क्या क्या किया आरव ने? कबीर ने बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात पता है, जिस दिन तू हॉस्पिटल में थी आरव ने अपना फ़ोन बेच दिया।
1: क्या?
0: हाँ, और अपनी बाइक भी।
1: क्यों?
0: पता नहीं, मीरा के अंदर सन्नाटा छा गया। अगर आरव उसे सच में छोड़ चुका था तो फिर उसने अपनी बाइक क्यों बेच दी, फोन क्यों बेचा? लेकिन गुस्सा सवालों को ज्यादा देर तक टिकने नहीं देता। कुछ दिन बाद मीरा के घर एक एनवलप आया, उसमें पैसे थे काफी सारे, साथ में एक छोटी सी स्लिप मीरा के पापा के ट्रीटमेंट के लिए, नाम नहीं था। मीरा ने पैसे रिटर्न करने की कोशिश की लेकिन सेंडर का कोई एड्रेस नहीं था। उसी रात मीरा को एक अननोन नंबर से कॉल आया। हेलो मीरा? हाँ कौन? आरव से दूर रहना।
2: कौन बोल रहा है?
0: कॉलर ने बोला, वो तुम्हारा दोस्त नहीं है।
2: आप कौन हैं? आप कौन हैं?
0: कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। मीरा कुछ सेकंड तक फोन को देखती रही, उसके हाथ कांप रहे थे। अगले दिन उसने आरव को पहली बार देखा, लगभग 3 महीने बाद। कॉलेज के बाहर आरव किसी आदमी के साथ खड़ा था, उस आदमी के हाथ में एक एनवलप था। आरव ने एनवलप लिया और चला गया। मीरा दूर से सब देख रही थी, वो उसके पीछे गई।
2: आरव, आरव रुक जाओ।
0: आरव रुक गया, धीरे से पीछे मुड़ा, दोनों की आंखें मिली। 3 महीने का डिस्टेंस, एक पल में सामने खड़ी थी।
2: तू ठीक है?
0: आरव ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने तुझे कितनी बार कॉल किया?
2: मुझे पता है। तो उठाया क्यों नहीं?
0: क्योंकि मुझे नहीं उठाना था। मीरा ने पूछा, क्यों? आरव ने बोला, मीरा हमारी दोस्ती अब खत्म हो चुकी है।
2: क्या बात कर रहा है तू?
0: आरव ने बोला, तुम्हें अपनी लाइफ जीनी चाहिए। मीरा ने जवाब दिया,
2: तू डिसाइड करेगा मेरी लाइफ?
0: मीरा, नहीं, तूने प्रॉमिस किया था, तूने कहा था बिना पूछे साथ रहेगा। आरव ने जवाब दिया, वो गलती थी।
2: गलती? मेरे पापा हॉस्पिटल में थे, मैं अकेली थी और तू तू गायब हो गया।
0: आरव ने जवाब दिया, मैंने वही किया जो मुझे करना था।
2: लेकिन क्यों?
0: तुमसे दूर होना था। आरव ने उसकी तरफ देखा और बस इतना कहा, क्योंकि तुम्हारे लिए यही बेहतर है। फिर वो चला गया। मीरा वही खड़ी रह गई, आंखों में आंसू थे लेकिन इस बार उसने रोका नहीं। गुस्से में बोली, मुझे तुमसे नफरत है। आरव ने पीछे मुड़कर देखा लेकिन कुछ नहीं कहा, बस हंसकर चला गया। कुछ दिन बाद मीरा के पापा की कंडीशन अचानक खराब हो गई। डॉक्टर्स ने कहा इमीडिएट सर्जरी करनी होगी, वरना कुछ भी हो सकता है। मीरा को पैसे चाहिए थे लेकिन उसके पास नहीं थे। उसने अपना बैंक अकाउंट चेक किया, वहाँ कुछ नहीं था। मीरा बिलिंग काउंटर के पास चली गई रिक्वेस्ट करने के लिए, कुछ मुहूर्त के लिए। जब वो रिसेप्शनिस्ट के पास गई और पूछी कि मुझे पैसे पे करने के लिए कुछ दिन चाहिए, रिसेप्शनिस्ट ने कहा, पूरे पैसे ऑलरेडी डिपॉजिट हो चुके हैं मैम।
2: क्या? पैसे डिपॉजिट किए? मगर किसने?
0: रिसेप्शनिस्ट ने कहा, एक लड़का आया था, नाम उसका नाम आरव था। मीरा शॉक हो चुकी थी, उसके चेहरे से जैसे सारी जान निकल गई। उसने तुरंत आरव को कॉल किया।
3: आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें।
0: फोन स्विच ऑफ था, फिर किया, स्विच ऑफ, फिर किया, फिर

0: ही स्विच्ड ऑफ। वो कबीर के पास गई। तुझे पता था क्या आरव ने पैसे दिए हैं? कबीर कुछ नहीं बोला। तुझे पता था क्या? कबीर ने जवाब दिया, मीरा बोल क्या बात है, मुझे पता था कि आरव ने पैसे भरे। तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? कबीर ने बोला, क्योंकि आरव ने मना किया था। उसने मना किया क्यों? कबीर ने जवाब दिया, क्योंकि वो चाहता था कि तुझे लगे कि उसने कुछ नहीं किया। लेकिन क्यों मुझे नहीं पता। कबीर से बात करने के बाद एक और सच सामने आया। आरव ने सिर्फ बाइक नहीं बेची थी, उसने अपनी सारी सेविंग्स निकाल दी थी, अपना लैपटॉप बेच दिया, फ़ोन बेच दिया, कॉलेज छोड़ दिया और एक प्राइवेट कंपनी में नाइट शिफ्ट करने लगा, सिर्फ इसीलिए कि मीरा के पापा का ट्रीटमेंट चलता रहे। मीरा को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिस लड़के से वो नफरत कर रही थी वही उसके पापा का ट्रीटमेंट करवा रहा था। लेकिन सवाल अब और बड़ा था, उसने ऐसा क्यों किया? एक रात कबीर ने मीरा को कॉल किया। कबीर ने कहा, मीरा तू अब कहाँ है? मीरा ने जवाब दिया, घर पर। वो आरव का एक्सीडेंट हो गया। क्या, कैसे? कबीर ने कहा, वो हॉस्पिटल में है। मीरा हॉस्पिटल की ओर भागी, लेकिन जब वो हॉस्पिटल पहुंची, कॉरिडोर में बहुत लोग खड़े थे। कबीर सामने था, उसकी आंखों में आंसू थे। मीरा समझ गई कुछ बहुत बुरा हो चुका था। कबीर, आरव कहाँ है? जवाब दो कबीर, आरव कहाँ है? कबीर ने कोई जवाब नहीं दी। कबीर, आरव कहाँ है? कबीर ने बस अपना सिर झुका लिया और मीरा की दुनिया वहीं रुक गई। जिस दोस्त से मीरा ने कुछ दिन पहले कहा था, मुझे तुमसे नफरत है, आज वही दोस्त उसे हमेशा के लिए दूर हो चुका था। लेकिन मीरा को अभी भी कुछ नहीं पता था कि आरव ने उससे डिस्टेंस क्यों बनाई थी। और उससे भी बड़ा सवाल, उसने अपने लास्ट डेज में इतना सब उसके लिए क्यों किया?
1: Hey there, do you agree with me that some emotions cannot be explained? They can only be tasted. With a pinch of history, a spoonful of culture, and with a whole lot of flavor, every dish has a tale to tell. Of its roots, of its rich legacy, and about the goodness within it. From royal recipes to timeless streetside favorites, discover the stories behind your loved foods on Jashne Hyderabad on Rainbow FM at 2 p.m. every day. Jashne Hyderabad, where food is served on air.

आप सुन रहे थे एक कहानी जहाँ पर मीरा और आरव जो बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन कुछ कारण से आरव दूर हो गया था मीरा से। मीरा को लगा अभी आरव को मीरा से दोस्ती नहीं चाहिए और मीरा उसे नफरत करने लगी थी। उस बीच आरव ने बिना मीरा को पता चले मीरा की बहुत मदद कर रहा था और अचानक आरव का एक्सीडेंट हो गया और आरव अब इस दुनिया में नहीं रहा। कहानी को आगे बढ़ाते हुए, सच हमेशा देर से क्यों मिलता है? तो दोस्तों, अगली सुबह मीरा हॉस्पिटल के उस रूम के बाहर बैठी थी जहां आरव की बॉडी रखी थी। उसने रात भर एक बार भी आंखें बंद नहीं की। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात बार बार आ रही थी, मुझे तुझसे नफरत है। उसने आरव से लास्ट टाइम यही कहा था और अब वो जवाब देने के लिए नहीं था। कबीर उसके पास आया, उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था। ये आरव का है। मीरा ने बैग लिया, अंदर एक पुराना फोन था, कुछ पेपर्स और एक छोटी सी नोटबुक। मीरा ने नोटबुक खोली, फर्स्ट पेज पर लिखा था मीरा के लिए। उसके हाथ कांपने लगे, मीरा नोटबुक पढ़ने लगी। मीरा, अगर तू ये पढ़ रही है तो शायद मैं तुझे ये बात खुद नहीं बता पाया। तुझे याद है तूने एक बार पूछा था कि अगर तू किसी प्रॉब्लम में होगी तो मैं तेरा साथ रहूँगा। मैंने प्रॉमिस किया था और मैंने वो प्रॉमिस निभाया, बस तुझे कभी पता नहीं चलने दिया। मीरा पढ़ती रही, हर पेज के साथ उसके आंखों में आंसू बढ़ते जा रहे थे। जब तेरे पापा हॉस्पिटल में थे तू बहुत डर गई थी, लेकिन मुझे उससे भी ज़्यादा डर एक और चीज़ का था। तू अपनी पढ़ाई छोड़ देगी, तू अपने ड्रीम्स छोड़ देगी, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि पैसों का अरेंजमेंट मैं करूँगा। जो सेविंग्स थी मैंने निकाल दी, जो चीज़ें मेरे पास थी मैंने सब बेच दिए, बाइक, लैपटॉप, फ़ोन, सब। लेकिन मीरा, एक बात है जो मैंने

से सबसे ज्यादा छुपाई। मीरा रुक गई। अगला पेज टर्न करने में मीरा के हाथ कांप रहे थे। जब तेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट थे, उस वक्त मैं सिर्फ उनकी प्रॉब्लम से नहीं लड़ रहा था, मैं अपनी प्रॉब्लम से भी लड़ रहा था। मीरा, मुझे एक बीमारी थी, एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में डॉक्टर्स मुझे पहले ही बता चुके थे कि मेरे पास ज़्यादा

चुके थे कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मीरा की आंखें नोटबुक पर जम गई। मैं कई महीनों से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, लेकिन मैं तुझे बताना नहीं चाहता था क्योंकि मुझे पता था तू मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। तू अपनी पढ़ाई छोड़ देगी, अपना ड्रीम छोड़ देगी सिर्फ मेरे लिए। मैं ये होने नहीं दे सकता था, इसीलिए जब डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरे पास लिमिटेड टाइम है, मैंने एक डिसीजन लिया। जो कुछ भी मेरे पास था वो मैं तेरे नाम कर दूंगा। पहले मुझे लगा शायद मैं तेरे साथ देकर भी तुझे बचा सकता हूँ, लेकिन फिर मुझे समझ आया अगर मैं तेरे साथ रहा तो मेरे जाने के बाद तू खुद को कभी संभाल नहीं पाएगी। इसीलिए मैंने तुझे मुझसे नफरत करने दी। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। जब मैंने कहा कि मुझे तेरी परवाह नहीं, मैं झूठ बोल रहा था। जब मैंने कहा हमारी दोस्ती खत्म हो चुकी है, मैं झूठ बोल रहा था। जब मैंने कहा प्रॉमिसेस बच्चों के लिए होते हैं, तब भी मैं झूठ बोल रहा था। सच तो ये था कि मैं हर बार तुझे खुद से दूर करते वक्त खुद को तोड़ रहा था। मीरा नोटबुक को और जोर से पकड़ लेती है। तू सोचती रही कि मैंने तुझे छोड़ दिया, लेकिन मीरा मैं तुझे छोड़ नहीं रहा था, मैं तुझे अपने बिना जीना सिखा रहा था। जो पैसे मैंने तेरे पापा के ट्रीटमेंट में दिए वो सिर्फ मेरी सेविंग्स नहीं थी, वो मेरे फ्यूचर के पैसे थे। वो पैसे जो शायद मैं अपनी जिंदगी में कभी यूज ही नहीं कर पाता। इसीलिए मैंने सोचा अगर मेरी जिंदगी में वक्त कम है तो कम से कम मेरी वजह से किसी और की जिंदगी थोड़ी लंबी, थोड़ी आसान और थोड़ी बेहतर हो सकती है। मीरा ने नोटबुक से नजर उठाई। उसने कबीर की तरफ देखा। तुम्हें पता था? हाँ, कब से? बहुत पहले से। और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कबीर ने कहा। आरव ने मना किया था। उसने कहा था मीरा को अगर पता चल गया तो वो मुझे बचाने के चक्कर में खुद को भूल जाएगी, और वो ये नहीं चाहता था। मीरा ने आंखें बंद कर ली। उसके सामने पिछले कुछ महीनों के सारे मोमेंट्स एक-एक करते आ रहे थे। हॉस्पिटल, आरव का फोन बंद होना, उसका बाइक बेचना, कॉलेज छोड़ना, रात के शिफ्ट, और वो दिन जब उसने कहा था मुझे तुझसे नफरत है। मीरा ने नोटबुक का लास्ट पेज खोला। इस बार सिर्फ कुछ लाइंस नहीं थी, आरव ने लिखा था, मीरा अगर मैं कभी तेरे सामने आकर ये सब बता देता तो शायद तू मुझे माफ कर देती, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तू मुझे इसीलिए याद रखे क्योंकि मैंने तेरे लिए अपनी जिंदगी दे दी। मैं चाहता हूँ कि तू मुझे उस लड़के की तरह याद रखे जो पहली बार तेरी सीट बचाने के लिए 25 पर बैठा था। और हाँ, तूने एक बार पूछा था हमारी दोस्ती कितने साल चलेगी। मैंने कहा था जब तक तू मुझे परेशान करती रहेगी। तो प्लीज ये काम बंद मत करना। नीचे लास्ट लाइन थी, और अगर कभी तुझे लगे कि मैंने तुझे छोड़ दिया था तो बस इतना याद रखना, मैं तुमसे दूर इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि तुम मेरी जिंदगी में इम्पोर्टेंट नहीं थी। मैं तुमसे दूर इसीलिए हुआ क्योंकि तुम मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा थी। मैं नहीं चाहता था कि मेरी मौत तुम्हारी जिंदगी भी खत्म कर दे। उस वक्त मीरा को समझ आया आरव उसे छोड़कर नहीं गया था, वो उसकी जिंदगी से खुद को मिटा रहा था ताकि उसके जाने के बाद भी मीरा की जिंदगी चलती रहे। मीरा ने नोटबुक अपने सीने से लगा ली और फूट फूट के रो पड़ी। तूने मुझे बताया क्यों नहीं? एक बार, बस एक बार मुझे बता देता तो मैं तुझे जाने नहीं देती, कबीर ने धीरे से कहा। वो जानता था, इसीलिए तो नहीं बताया। कुछ महीने बाद मीरा ने MBA में एडमिशन ले लिया।
उसने अपने पापा का ट्रीटमेंट

कंटिन्यू रखा और आरव के दिए हुए पैसे उसने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए नहीं, अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए यूज़ किए, बिल्कुल वैसे जैसे आरव चाहता था। हर साल उसी डेट पर मीरा अपने कॉलेज की सीट नंबर 25 पर जाकर बैठती थी। एक दिन उसके सामने एक नई लड़की आकर बैठी। लड़की ने बोला, एक्सक्यूज़ मी, ये सीट नंबर 24 है ना? मीरा मुस्कुराई, हाँ, और तुम्हारी सीट नंबर 25 है? लड़की हंस पड़ी। मीरा कुछ सेकंड्स तक उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, बस एक बात याद रखना, अच्छे फ्रेंड्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और अगर मिल जाए तो उन्हें गलत समझने में जल्दी मत करना। दोस्तों, कभी कभी हम इंसान से इसीलिए नाराज़ होते हैं क्योंकि हमें लगता है उसने हमें छोड़ दिया, लेकिन हर डिस्टेंस धोखा नहीं होता, हर खामोशी बेरुखी नहीं होती, और हर सैक्रिफाइस बताया नहीं जाता। दोस्तों, कुछ लोग आपको अपनी सच्चाई बताकर अपने पास नहीं रखते, वो अपनी सच्चाई छुपाकर आपको आगे बढ़ा देते हैं। आरव भी ऐसे ही था। उसके पास वक्त कम था, लेकिन उसने अपने बचे हुए वक्त मीरा का फ्यूचर के नाम कर दिया। उसके पास पैसे कम थे, लेकिन जो कुछ था सब दे दिया, और सबसे बड़ी बात, उसके पास मीरा के साथ रहने का वक्त कम था, इसीलिए उसने मीरा को अपने बिना रहना सिखा दिया। दोस्तों, कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आते, कुछ लोग सिर्फ इतना करने आते हैं कि जब वो चले जाए तब भी आपकी ज़िंदगी रुकनी नहीं चाहिए, और शायद आरव की दोस्ती की आखिरी निशानी भी यही थी। मीरा ने उसे खोकर अपना सपना नहीं खोया, उसने आरव का सपना पूरा किया, और उस दिन सीट नंबर 25 पर बैठकर मीरा ने पहली बार खिड़की की तरफ देखा, मुस्कुराई और धीरे से कहा, परेशान कर रहा है ना अभी भी? तो ठीक है, कुछ दोस्त जिंदगी भर साथ नहीं चलते, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी को ज़िंदगी भर के लिए बदल जाते हैं।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे FM रेनबो 101.9। मैं हूं आपका दोस्त आरजे जेडी, रेनबो के साथ। जी हाँ, लाइफ है रंगीन। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी, आप मुझे बता सकते हैं। और वैसे तो अभी आप सभी का फेवरेट सेगमेंट शुरू हो चुका है, हेलो रेनबो का, जो कि होता है 1 o'clock से। और स्टूडियो क्लॉक में टाइम हो रहा है 1:01 और 40 सेकेंड। जी तो दोस्तों, आप मुझे कॉल पर बता सकते हैं आपको कैसी लगी कहानी। आप हमको व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और नंबर है 4023234822। और आप हमें कॉल्स कर सकते हैं और मैं आपको एक टॉपिक भी दे दूंगा। और वैसे तो आज सीनियर सिटीजन्स डे है, तो पहले मैं नंबर्स बता दूं कि टॉपिक बोलूं। नंबर्स बता देता हूँ। तो जी, तो हमारे नंबर्स हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 0402323-0030, 0402323-4821 और 0402970-4715। और आज तो सीनियर सिटीजन्स डे है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज का टॉपिक यानी कि प्रश्न यानी कि क्वेश्चन वही क्यों ना हो। तो आज सीनियर सिटीजन्स डे है, तो आज का सवाल रिलेटेड टू सेम टॉपिक, ओपिनियन क्या है। जी हाँ, तो आपका क्या राय है इस स्टेटमेंट पर कि हमें बड़ों से सलाह लेनी चाहिए, यानी कि बड़े और बुजुर्ग। मोस्टली मैं यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स की ही बात कर रहा हूँ, जिनकी एज कैटेगरी क्रॉस होती है 50-55 के आगे। जी हाँ, तो सीनियर सिटीजन्स की जो सलाह होती है वो कितने मायने रखती है और क्या है। अगर आप चाहो तो हमें बता सकते हैं कि आपके किसी बड़े बुजुर्ग ने, किसी दादा दादी या नाना नानी ने आपको कुछ सलाह दिया और आपको वाकई में वो अच्छा लगा और आप अपने लाइफ में उसको फॉलो करते हैं और आप चाहते हैं कि सभी उसे फॉलो करें, तो वो कुछ है तो आप हमें हमसे शेयर कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से मैं नंबर्स दोहरा देता हूँ। वैसे तो फ़ोन कॉल्स आना चालू हो चुका है और हमारे नंबर्स है 0402323-0030, 0402323-4821 और तीसरा नंबर है 0402970-4715। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 4023234822। तो जी हाँ, मैं फिर से दोहरा देता हूँ, 4023234822 आप हमें व्हाट्सएप कर सकती है। और हमें व्हाट्सएप पे मैसेज किया है हुदा जी बाबा नगर से, और ये कहते हैं सभी सुनने वालों को जुम्मा मुबारक। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। और ये कहती है जेडी जी, आपका कहानी सुनाने का अंदाज़ बहुत बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हुदा जी, बहुत शुक्रिया आपका ये सब प्यार के लिए। और आप सभी लोग मुझे सुन रहे हैं। और एक मैसेज आता है, आरजे जेडी आपकी कहानी बहुत इमोशनल थी, दिल छू गई। फ्रॉम गना, फ्रॉम बेंगलुरु। थैंक यू सो मच गना जी, आप हमें बेंगलुरु से भी सुन रहे हैं। लगता है आप हैदराबाद से बिलोंग करते हैं, इसीलिए आप वहाँ जाकर भी हमारे शायद एप्लीकेशन में सुन रहे हैं न्यूज़ ऑन AIR। जी हाँ, जो आप इंडिया में या नहीं तो दुनिया में कहीं पर भी हो, आप सुन सकते हैं हमको हमारे हैदराबाद का चैनल या तेलंगाना का चैनल, या नहीं तो फिर इंडिया के किसी

0: बरसों बाद ऊँट लेने निकली हूँ। ऐसा लगता है कि वो किसी और सदी की बात थी।
1: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
0: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
1: एक काम करें, जब तक तुम यहाँ हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे। कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस।
2: दोस्तों, ये है गाना लता मंगेशकर जी का तेरे बिना जिंदगी से कोई, जो अभी विजय जी ने हमें रिक्वेस्ट किया था। लेकिन गाने से पहले कुछ बातें हैं, बहुत खूबसूरत है, सुनिएगा।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

वेलकम बैक दोस्तों। वैसे आपका तो वेलकम बैक, लेकिन मेरा मेरा टाइम हो चुका है बाय बाय करने का आपको। और फिर मिलता हूँ मैं फिर से अगले हफ्ते या उसके अगले हफ्ते, देखता हूँ। और आज हमने बात की बहुत अच्छी अच्छी बातें, बहुत अच्छे टॉपिक्स के बारे में, जिनमें था वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे, जो हम प्रमुख से उसका एक प्रश्न लेकर हम आपसे हेलो रेनबो में भी बात की है। बहुत लोगों ने अच्छे अच्छे मैसेजेस शेयर किए हमसे, और उन्होंने कहा है सारे अपने मैसेजेस

0: उन्होंने अपने दिल की बातें कहा है हमसे, और मोस्टली सबका यही कहना है कि हमें उनका 100% ख्याल रखना होगा, नो अदर ऑप्शन. जी हाँ, क्योंकि मैं एक बार फिर से मैं वो डायलॉग दोहरा देता हूँ, बचपन के बाद बचपन वापस आता है. तो इसीलिए हम जिस तरह से बच्चों का ख्याल रखते हैं, उसी तरह से हमें बड़े और बुज़ुर्ग का ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो शरारत करे या नहीं तो फिर देखभाल. हमें उनका ख्याल रखना चाहिए. और हमें बहुत लोगों ने मैसेजेस किए हैं, और यहाँ पर दीप मैसेज करते हैं, आपका स्टोरी बहुत इमोशनल था, बहुत थैंक यू सर आपका. और ये गाना कहते हैं, कभी कभी मेरे दिल में, आप लगाइए ज़रूर सर. और हमें मैसेज करते हैं अश्विन जी, कोटी कुशल मार्केट से, जय श्री कृष्णा. जय श्री कृष्णा सर. और ये लिखते हैं, मानसिक तनाव और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वो अपने लिए कम और दूसरे के लिए ज़्यादा सोचता है. वाह सर, वाकई में बहुत ही सच बात कही है आपने, और बहुत बहुत शुक्रिया. और दूसरा वाला एक मैसेज लिखते हैं, कोई नहीं बढ़ाता किसी का हौसला, तख्त खराब हो तो वक्त खराब हो तो लोग फासले बढ़ते हैं. जी हाँ सॉरी, वो बहुत छोटा मैसेज है और अक्षर भी बहुत छोटे छोटे लिखे हुए हैं. कोई नहीं बढ़ाता किसी का हौसला, वक्त खराब हो तो लोग फासला बढ़ाते हैं. जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत बात कही है आपने. बहुत शुक्रिया अश्विन जी, फ्रॉम कोठी कुशल मार्केट. एंड यहाँ पर हमें लिखते हैं सरवर अली जी भी, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत थैंक यू. तो जी हाँ दोस्तों, तो आज हमने बात की सीनियर सिटीजन्स डे के बारे में, वरलक्ष्मी व्रतम के बारे में, और भूमिका और कनिका जी के बर्थडे के बारे में, और साथ ही यूसेन बोल्ट की, लाइटनिंग बोल्ट वाले 40 साल हो गए वो, उनके बारे में बात किया हमने. मोनालिसा की पेंटिंग की अनोखी चोरी वाली कहानी सुनी आपने, और मूवीज़ के बारे में, कुछ जो नई चल रही है उसके बारे में बात किया है, और इंटरनेशनल डे फॉर रिमेम्बरिंग एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म. जी हाँ, विक्टिम्स के बारे में भी हमने बात की, और हैदराबाद में एक हिडन जेम के बारे में मैंने आपको बताया, और लास्ट में एक खूबसूरत सी कहानी मैंने आपको बताई. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमको इतना सारा प्यार दिया है. और ये मैसेज करते हैं, गुड आफ्टरनून सर जी, हाउ आर यू, दिस इज़ महेश फ्रॉम बालानगर, एंड यू आर प्लेइंग वेरी गुड सॉन्ग्स फ्रॉम मॉर्निंग, थैंक यू फॉर दैट. बहुत बहुत थैंक यू सर. और एक मैसेज आया है, वैसे तो मुझे जाना है, और हमारे नेक्स्ट RJ आ चुके हैं, राजेश जी आ चुके हैं ऑलरेडी आपको बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम देने के लिए. कुछ बोलना है राजेश जी आपको?
1: హాయ్. సో మరి ఈరోజు మనం పండగని చాలా ఆనందంగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఆ పండగకు సంబంధించిన విషయాలు, ఇంకా చాలా విషయాలు మీతో మాట్లాడడానికి నేను చాలా చాలా ఆసక్తిగా ఉన్నాను. సో మీరు ట్యూన్ చేసి ఉంచండి రెయిన్బో ఎఫ్ఎం.
0: थैंक यू सो मच सर. देख रहे हो ना सर का जोश कैसा है. सो डोंट वरी, आपको एंटरटेन करने के लिए हम लगातार प्रयत्न करते रहेंगे. और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का. और चलिए हम अभी टाटा बाय बाय बोलते हैं, और सभी अपना ख्याल रखिएगा, एम्बुलेंस को प्लीज़ रास्ता दीजिएगा, और कुत्ते बिल्लियों का भी ध्यान रोडों पे रखिएगा. थैंक यू सो मच.

ये आकाशवाणी हैदराबाद है, FM 101.9 MHz पर, और हमें आप सुन रहे हैं मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। स्टूडियो सी घड़ी में इस वक्त 9:30 हो चुके हैं। अब वक्त है उर्दू प्रोग्राम नए रंग का। नए रंग सुनने वाले सभी सामाइन की खिदमत में हमारा पुरखलूस आदाब। सामाइन, प्रोग्राम नए रंग का आगाज हुआ चाहता है, आइए सुनते हैं। आगाज से पहले सिकंदर अली वजद की ये गजल। मुस्कुराओ खुशी की बात करो, रोने वालों हंसी की बात करो, ये अंधेरे के तस्करे कब तक, दोस्तों रोशनी की बात करो। खूनफिशां मौत आएगी एक दिन, गुलफिशां जिंदगी की बात करो। अहले महफिल उदास बैठे हैं, अब कोई दिल लगी की बात करो। बात जब है के दुश्मनों से भी, जब करो दोस्तों दोस्ती की बात करो। फूल मुरझा गए तो क्या गम है, खिलने वाली कली की बात करो। कल की बातें करेंगे कल वाले, वजद तुम आज की बात करो। जी हां सामाइन, मुस्कुराना ही जिंदगी है। मुस्कुराहट महज होठों की जुम्बिश नहीं, बल्कि दिल की रोशनी है जो अंधेरों को मिटा देती है। खुशी की बात करना दरअसल वक्त के बहाव में उम्मीद का चिराग जलाने जैसा है, और रोने वालों को हंसी की बात सुनाना इंसानियत की सबसे बड़ी खिदमत है, क्योंकि यह दुख को सुकून में बदल देता है। सामाइन, इसी मैसेज के साथ, इसी पैगाम के साथ आइए शुरुआत करते हैं प्रोग्राम नए रंग की।

0: जाने का इल्म नहीं होता, जैसे कि
1: जी
0: स्किजोफ्रेनिया।
1: अच्छा डॉक्टर उज्मा, डिप्रेशन में कैसा महसूस होता है?
0: डिप्रेशन का मरीज हर वक्त उदास और अफसरदा और मायूस रहता है।
1: अच्छा
0: वो रोज़मर्रा के कामों पर तवज्जो नहीं दे पाता।
1: जी,
0: जिन चीज़ों में मरीज़ को पहले दिलचस्पी और मज़ा आता था, अब उनमें दिल नहीं लगता। मरीज़ अपने आप को औरों से कमतर समझने लगता है।

0: से कमतर समझने लगता है।
1: जी।
0: वो माजी के छोटी छोटी बातों पर, छोटे छोटे वाकयात पर खुद को इल्ज़ाम देना शुरू करता है और मुस्तकबिल से मायूस हो जाता है। मरीज़ की भूख ख़राब हो जाती है और
1: अच्छा।
0: नींद भी ख़राब हो जाती है। रोज़ सुबह 6 बजे उठा करता था तो डिप्रेशन की वजह से वो सुबह 4 बजे ही उठ जाता है और
1: अच्छा
0: दोबारा नींद लगने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है।
1: जी।
0: अगर बीमारी की शिद्दत बढ़ जाए तो मरीज़ को खुदकशी के ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो खुदकशी करने की कोशिश भी करता है।
1: अच्छा जी। डॉक्टर उज्मा, डिप्रेशन क्यों हो जाता है, इसकी क्या वजूहत है, हम जानना चाहेंगे।
0: जी, डिप्रेशन होने के बहुत सारे वजूहात हैं। पहली वजह कि दिमाग में कुछ केमिकल्स, जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं,
1: जी
0: उनकी मकदार कम हो जाना, जैसे कि सेरोटोनिन, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन और ब्रेन डराइव न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर। इंसान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी, हालात और वाकयात, जैसे कि किसी करीबी अजीज़ का इंतकाल, तलाक, अचानक से नौकरी का ख़त्म हो जाना, ये
1: जी
0: सारी चीज़ों से हम भी गुजरते हैं।
1: जी
0: लेकिन
1: जी
0: कुछ दिनों के बाद हम इस हकीकत को तस्लीम कर लेते हैं
1: बेशक बेशक,
0: और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वापस आ जाते हैं।
1: यकीनन ये।
0: लेकिन डिप्रेशन के मरीज़ के लिए ये करना बहुत मुश्किल होता है।
1: अच्छा
0: कुछ जिस्मानी बीमारियां जो तवील अरसे तक चले,
1: जी,
0: जिसके इलाज के लिए मरीज़ को रोज़ गोलियां खाने की ज़रूरत पड़े, जैसे कि कैंसर की बीमारी, सांस की बीमारियां, दिल के बीमारियां। डिप्रेशन अगर देखा गया तो औरतों में मर्दों से 2 गुना ज़्यादा होता है।
1: अच्छा
0: देखा जाए तो 30 से 40 साल की उम्र में डिप्रेशन की अलामत ज़ाहिर होना शुरू होती है। डिप्रेशन अगर आपके घर में से किसी को है तो आपको आने का इम्कान भी ज़्यादा है। अगर आपके दोनों वालदेन को है तो आपको आने का इम्कान 50% है। अगर किसी एक को है तो आपको आने का इम्कान 10 से 25% है।
1: जी। डॉक्टर उज्मा, डिप्रेशन में आप किस तरह से अपनी मदद कर सकते हैं, या किसी को हो जाए तो हम उस मरीज़ की किस तरह से मदद करेंगे।
0: जी, सबसे पहले डिप्रेशन के मरीज़ को ये समझना है कि अपनी जज्बाती कैफियत को, ख्यालात को, सोच को एक राज ना रखें।
1: अच्छा
0: जब भी वो कोई ऐसी खबर सुने जिसकी वजह से उसके अंदर हैबत तारी हो, तो
1: जी
0: वो किसी के पास जाकर उसको शेयर करें।
1: जी जी
0: अपने ख्यालात और अपने फीलिंग्स बार बार किसी के सामने दोहराने से, रो लेने से दिल हल्का हो जाता है।
1: बेशक,
0: इससे
1: यकीनन
0: दिमागी
1: ये।
0: कैफियत में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है।
1: जी।
0: दूसरी बात, जिस्मानी वर्जिश ज़रूर करें, चाहे
1: अच्छा
0: वो आधे घंटे की चहलकदमी ही क्यों ना हो।
1: वर्जिश का भी असर दिमागी सेहत पर होता है,
0: जी, जिस्मानी सेहत
1: यकीनन।
0: के साथ साथ दिमागी सेहत पर भी वर्जिश का बहुत ज़्यादा
1: अच्छा
0: असर होता है,
1: जी
0: नींद बेहतर हो जाती।
1: जी
0: तीसरा काम ये करें कि खुद को किसी ना किसी काम में मसरूफ़ ज़रूर रखना चाहिए। जैसे कि मैं
1: जी
0: आपको बता चुकी हूँ कि औरतों में ज़्यादा है मर्दों से, तो औरतों को चाहिए कि घर के काम काज में अपने आप को मसरूफ़ रखे। इससे जब इंसान का जहन कहीं और तरफ मसरूफ़ रहेगा
1: बेशक,
0: तो
1: यकीनन
0: तकलीफ़दह ख्यालात से दूर रहेगा।
1: जी।
0: और चौथा तरीका ये है कि अच्छी ग़िज़ा ले, जैसे कि ताज़े फल, सब्ज़ी, अंडा, मच्छी, दूध। डिप्रेशन
1: अच्छा
0: के मरीज़ खाना पीना काफ़ी हद तक कम कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके
1: जी
0: जिस्म में वाइटामिन, जैसे कि वाइटामिन B6, वाइटामिन B9 और वाइटामिन D की कमी हो जाती है।
1: अच्छा जी
0: इससे डिप्रेशन की बीमारी की शिद्दत और बढ़ जाती है।
1: जी
0: डिप्रेशन की वजह को ढूंढने की कोशिश करें, उसको लिखे, उस पर गौर करें, उस पर फिक्र करें और इसको हल करने का तरीका ढूंढें। हमेशा खुद को याद दिलाएं कि जिस तजुर्बे से और जिस हादसे से आप गुजर रहे हैं, उसी तरीके से दुनिया में बहुत सारे लोग गुजर रहे हैं, तो कभी मायूस मत हो।
1: डॉक्टर, अगर डिप्रेशन का इलाज नहीं किया जाए तो उस सूरत में क्या होगा।
0: डिप्रेशन की शिद्दत इतनी बढ़ सकती है कि मरीज़ खुदकशी के ख्यालात सोचने लगता है और
1: जी
0: खुदकशी करने की कोशिश करता है। स्टडीज़ के मुताबिक 10 से 25% के लोग जिसके अंदर डिप्रेशन है, वो खुदकशी करने की कोशिश करते हैं।
1: अच्छा, डिप्रेशन किस किस नौईयत का होता है।
0: डिप्रेशन अगर 2 साल से ज़्यादा के लिए मुसलसल चलता रहे तो उसको हम क्रॉनिक मेजर डिप्रेशन कहते हैं।
1: अच्छा
0: कुछ मरीज़ों में डिप्रेशन हर साल सिर्फ बारिश या सर्दी के मौसम में आता है, उसको हम सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं।
1: जी
0: इसके इलाज में मरीज़ को फोटोथेरेपी या लाइट थेरेपी दिया जाता है।
1: अच्छा
0: खुसूसन औरतों में डिलीवरी के बाद डिप्रेशन होने का इम्कान ज़्यादा होता है, जिसको
1: जी
0: हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं।
1: अच्छा जी
0: पंद्रह
1: जी
0: से 15 से 20% औरतें असरदेह होती है। ये 2 से 4

0: हफ्तों के दरमियान होता है। इसकी वजह से औरत के अंदर मायूसी, बेजारी, इसके साथ साथ छोटी छोटी बातों को लेकर बार बार रोना देखा जा सकता है। अक्सर औरतें फैमिली सपोर्ट, हस्बैंड के सपोर्ट से खुद को इससे बाहर निकल जाती हैं, लेकिन कुछ औरतों को दवाई की भी जरूरत पड़ सकती है, एंटी डिप्रेसेंट्स।
1: अच्छा डॉक्टर उज्मा, डिप्रेशन के अलावा जो जहनी अमराज है जैसे PTSD वगैरह, तो आप इस बारे में रोशनी डालिए।
0: PTSD का फुल फॉर्म है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। जब इंसान किसी सदमे से गुजरता है जो इंतहाई खौफनाक हो और जहन पर हावी हो जाए, मिसाल के तौर पर सड़क पर कोई दिल दहला देने हादसे का शिकार होना, किसी करीबी रिश्तेदार की अजियतनाक मौत, मुसलसल कोई जिस्मानी ज्यादती का शिकार होना, जंगी कैदी बनना, या फिर बचपन में कोई ऐसे हादसे से दो चार होना जो जहन पर बहुत ज़्यादा भारी पड़े, भी इस तरह के वाकयात से आप भी गुजर सकते हैं, मैं भी गुजर सकती हूँ। लेकिन कुछ लोगों में इन हादसे की वजह से जो जहनी अजियत होती है वो मुसलसल जारी रहती है।
1: अच्छा, एक मर्ज की शक्ल अख्तियार कर जाती है।
0: जी, अगर वो चार हफ्ते से ज्यादा चली जाए तो उसको हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं।
1: डॉक्टर उज्मा, PTSD में कैसे महसूस होता है, यानी कि मरीज अपने आप को कैसे महसूस करता है?
0: जज्बाती सदमे के बाद मरीज रंजोअलम, जहनी दबाव और एहसास जुर्म का शिकार होता है। जिस हादसे से वो गुजरा है उसका मंजर बार बार जहन में आना,
1: अच्छा,
0: उससे रिलेटेड दहशतनाक तस्वुरात जहन में आना,
1: जी,
0: और मरीज दिन में कई बार जहनी तौर पर इस सूरत हाल से गुजरता है।
1: अच्छा जी, PTSD में मुब्तला मरीज की किस तरह से मदद कर सकते हैं, यानी कि अफराद खानदान या किसी को ये मर्ज लाहा हो जाए अपने खानदान में, तो हम उसकी किस तरीके से मदद करना चाहेंगे, इस बारे में आप बताइए।
0: अगर आपके घर में या आपके आसपास किसी को PTSD हो चुका है, तो आप उनसे वाकई के बारे में बात करने की कोशिश करें।
1: अच्छा,
0: आपको ये याद रखना ज़रूरी है कि जो मरीज़ जो PTSD के मरीज़ होते हैं झिंझिलाए हुए रहते हैं, बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं छोटी छोटी सी बात पर भी। अच्छा। क्योंकि ये जज्बाती सदमे की कैफियत से मुकम्मल तौर पर बाहर नहीं निकलते, और इन्हें उस वाक़े के बारे में बताने का मौका दें जब वो अपने एहसासात और अपना तजुर्बा बयान कर रहे हो, तो आप बीच में मदाखलत ना करें।
1: अच्छा।
0: या अपने ज़ाती तजुर्बात इन पर मुसल्लत ना करें।
1: जी अच्छा, PTSD से किस तरह सेहतयाब हुआ जा सकता है?
0: अगर आप कोई अजियतनाक हादसे से गुजरे हो और आप उसकी वजह से जहनी अजियत में हैं और उससे निकल नहीं सक रहे, तो फौरन माहिर डॉक्टर साइकियाट्रिस्ट से रुजू करें।
1: अच्छा।
0: PTSD के इलाज के काफ़ी सारे तरीके हैं। पहला तरीका है साइकोथेरेपी।
1: अच्छा, जी,
0: जिसको हम नफसियाती इलाज कहते हैं।
1: जी।
0: इसमें मरीज को वाकये के बारे में याद दिलाया जाता है, इसका तज्जिया किया जाता है, इसके मंतिक तलाश किए जाते हैं, जिससे मरीज का जहन उस वाकये को दिमाग के हाफिजे के खाने में रखकर दूसरे मामूल के कामों की तरफ मुतवज्जे होता है।
1: जी, अच्छा।
0: दूसरा तरीका ये है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसको हम सोच और बर्ताव की साइकोथेरेपी कहते हैं।
1: जी।
0: ये थेरेपी में मरीज को अपने यादों को मुख्तलिफ तरीके से सोचने में मदद दी जाती है, ताकि ये यादें कम तकलीफ दे और काबिल बर्दाश्त हो।
1: अच्छा।
0: और जब भी ये अजियतनाक वाकया या याद उसके जहन में ताज़ा हो, तो वो उसको नज़रअंदाज कर सके। तीसरा तरीका है दवाइयों के जरिए, जिसको हम SSRIs और बेंजोडाइजेपिन्स के नाम से जानते हैं। और चौथा तरीका ये है कि आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रीप्रोसेसिंग।
1: जी, अच्छा डॉक्टर उज्मा, अगर इस मर्ज का पता चल जाए तो मरीज से किस तरीके से हम बिहेवियर करें, उसे कैसा सलूक करें कि वो इस मर्ज से निकल आए?
0: PTSD के मरीज हर वक्त बेसुकूनी में रहते हैं, हर वक्त इर्द गिर्द नज़र दोहराते रहते हैं, चौकन्ना रहते हैं। जब भी वो सोते हैं तो वो उस ख्वाब में भी वो लोग वो हादसे को अगर देखेंगे तो नींद से चमक कर उठते हैं। तो जब भी वो लोग उस हादसे के बारे में कुछ ज़्यादा सोचने लगे, तो जिस्मानी कैफियत जैसे कि दिल की धड़कन तेज़ होना, सर दर्द, पसीने, हाथ पैर वजन हो जाना, ये सारी चीज़ें उन लोगों में दिखाई देती हैं,
1: अलामतें हैं।
0: तो अगर आपको ये सारी अलामतें नज़र आ रही हैं, तो उनसे बात करें, उनसे रुजू करें। अगर उनको साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है तो उनको वहाँ पर लेकर जाएं। अगर आपको मालूम करना है कि

0: फलां शख्स पीटीएसडी से बाहर निकल चुका है,
1: जी
0: तो उसको मालूम करने के तरीके ये है कि जब वो मरीज़ या फिर
1: जी
0: वो शख्स
1: जी
0: उस वाक़े के बारे में, हादसे के बारे में सोचना बंद कर दे, या फिर
1: अच्छा
0: अगर सोचे तो भी
1: जी
0: उसको ज़्यादा तकलीफ़ ना हो इस हद
1: अच्छा
0: तक के उसके जिस्मानी
1: जी,
0: अलामत ज़ाहिर
1: वो
0: होना शुरू हो।
1: हादसात का असर उसके जिस्मानी और जहनी सतह पर नहीं नज़र आना चाहिए, तो वो उस मर्ज
0: जी
1: से निकल चुका है मालूम हो जाएगा
0: जी
1: जी। इसके अलावा डॉक्टर उज्मा, कोई और अमराज हैं जहनी तनाव के, इस बारे में कहना चाहेंगी आप?
0: जी स्किजोफ्रेनिया, स्किजोफ्रेनिया एक नफसियाती बीमारी है
1: जी
0: जिसके
1: अच्छा
0: दो तरह के अलामत होते हैं,
1: जी
0: एक मुस्बित और दूसरी मनफी।
1: जी
0: अगर ये अलामत एक महीने से ज़्यादा मुसलसल किसी इंसान में पाई जाए, तब हम उसको स्किजोफ्रेनिया का पेशेंट कहते हैं।
1: अच्छा
0: मुस्बित अलामत वो अलामत होती है जो बीमारी के हिस्से में मौजूद रहती है और
1: अच्छा
0: सेहतमंदी के हिस्से में नहीं रहती,
1: जी
0: जैसे कि हैल्यूसिनेशंस, किसी शय या इंसान की गैर मौजूदगी में मरीज़ को वो शय या इंसान नज़र आता है, इसको हम विजुअल हैल्यूसिनेशंस कहते हैं।
1: जी
0: मरीज़ को तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं, कभी ये आवाज़ें मरीज़ से बात करती हैं, कभी ये आवाज़ें खुद में बातें करती हैं, इसको हम ऑडिटरी हैल्यूसिनेशंस कहते हैं। स्किजोफ्रेनिया के मरीज़ों में ऑडिटरी हैल्यूसिनेशंस ज़्यादा पाई जाती हैं और विजुअल हैल्यूसिनेशंस कम मकदार में पाई जाती हैं। ये आवाज़ें और ये दिखाई देना मरीज़ के लिए उतना ही हकीकी होता है जितना कि आज आप और मैं बात कर रहे हैं या आप और मैं
1: अच्छा
0: एक दूसरे को देख रहे हैं।
1: जी, जबकि वो नहीं रहते
0: जी
1: सामने, वो जहनी उन लोग इख्तिरा कर लेते हैं कि ये हकीकत ऐसी है बोल करके।
0: जी
1: अच्छा
0: दूसरी अलामत ये है डिल्यूजन्स। मरीज़ को ऐसे ख्यालात पर 100% यकीन होता है जिसकी कोई हकीकत नहीं होती, तो ऐसी
1: जी
0: गलतफहमी जो सबूत देने पर भी दूर नहीं की जा सके, उसको
1: अच्छा
0: डिल्यूजन कहते हैं।
1: जी
0: जैसे कि डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, मरीज़
1: जी
0: को ऐसा लगता है कि वो दुनिया का सबसे अमीर तरीन शख्स है। डिल्यूजन ऑफ पर्सिक्यूशन, मरीज़ को ऐसा लगता है कि हर वक्त कोई ना कोई उसको मारने की कोशिश कर रहा है। बाज़ मरीज़ों को ऐसा लगता है कि टीवी या रेडियो उनके लिए ख़ास पैगाम दे रहा है। बाज़ मरीज़ों को ऐसा लगता है कि इनके ख्यालात खुद इनके नहीं हैं बल्कि कोई और इनके जहन में ये ख्याल डाल रहे हैं, जिसको
1: अच्छा
0: हम थॉट इंसर्शन कहते हैं।
1: जी
0: मनफी अलामत, मनफी अलामत ज़्यादा नुमाया नहीं होती लेकिन
1: जी
0: मरीज़ की ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा गहरा असर डालती है,
1: अच्छा जी
0: जैसे कि ज़िंदगी में दिलचस्पी का ख़त्म हो जाना, कुछ करने का जज्बा नहीं होना, एहसासात ख़त्म हो जाना,
1: जी
0: किसी बात से खुशी नहीं होना। मरीज़ को अपना खुद का सेल्फ केयर करना भी बहुत मुश्किल होता है, जैसा कि नहाना धोना, साफ़ सफाई, और अपने घर में साथ रहने वाले लोगों से बात करना भी बहुत मुश्किल होता है।
1: अच्छा तो क्या ये तन्हा पसंद हो जाता है
0: जी
1: इसमें? डॉक्टर उज्मा, ये मर्ज क्यों लाहक होता है?
0: स्किजोफ्रेनिया होने के बहुत सारी वजूहात हैं,
1: जी
0: मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ वजूहात होते हैं। सबसे पहले जेनेटिक्स, जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्किजोफ्रेनिया के मरीज़ों में।
1: जी
0: जैसे कि अगर आपके वालदेन को स्किजोफ्रेनिया हो तो आपको आने का 40% इम्कान है।
1: जेनेटिक होता है ये?
0: जी अगर आपके बहन भाई में से किसी को है तो आपको आने का इम्कान 10% होता है।
1: अच्छा
0: अगर
1: जी
0: आपके कज़न्स में से किसी को हो तो आपको आने का इम्कान 3% होता है।
1: जी अच्छा
0: दूसरी वजह यह हो सकती है कि जहनी तनाव जो मुसलसल हो, जो काबिले बर्दाश्त ना हो, जैसा कि इंतकाल का सदमा, घरेलू तनाज़ियात, घरेलू झगड़े।
1: जी
0: स्किजोफ्रेनिया के मरीज़ को ही ख़ानदानी मसाइल से गुजरना पड़े तो इन मरीज़ों में बीमारी की शिद्दत बढ़ सकती है। बचपन की महरूमियाँ, जो बच्चे बचपन में कोई कोई अज़ियतनाक वाक़े का शिकार हो या
1: अच्छा
0: उन लोग का बचपन महरूमियों से गुजरा हो, तो
1: जी
0: इन बच्चों में दूसरी नफसियाती बीमारियों की तरह
1: जी
0: स्किजोफ्रेनिया होने का इम्कान भी ज़्यादा है।
1: अच्छा
0: दिमाग में कुछ केमिकल जैसे कि डोपामिन बढ़ जाने की वजह से स्किजोफ्रेनिया होने का इम्कान ज़्यादा है।
1: अच्छा तो क्या ये काबिले इलाज है ये मर्ज?
0: जी बिल्कुल
1: क्या इसका इलाज ना किया जाए तो किस तरीके से वो मरीज हम बिहेवियर करेगा?
0: अगर स्किजोफ्रेनिया के मरीज़ को वक्त पर इलाज ना मिले तो बीमारी की शिद्दत बढ़ जाती है। इसके लिए हॉस्पिटल में दाखिला कराना पड़ सकता है,
1: अच्छा
0: अगर
1: अच्छा
0: दाखिला हो तो लंबे अरसे तक रहना पड़ सकता है,
1: जी
0: ख़ुदकशी के इम्कानात बढ़ जाते हैं। वही
1: जी
0: अगर मरीज़ को वक्त पर इलाज मिले तो हैल्यूसिनेशंस, डेल्यूशंस, मनफी अलामत, मुस्बत अलामत में बहुत ज़्यादा कमी

0: होती है, सोचने की सलाहियत बेहतर होती है। इस बात का इम्कान बढ़ जाता है कि मरीज खुद मुख्तार जिंदगी गुजार सके और अपना ख्याल खुद रख सके।
1: जी, दवा कितने अरसे के लिए लेनी पड़ेगी इस मर्ज में?
0: स्किज़ोफ्रेनिया एक साइकोटिक बीमारी है जिसमें मरीज को अपने बीमार होने का इल्म नहीं रहता, इसलिए इस बीमारी के इलाज में घर वालों को और साथ रहने वालों को इस इलाज में लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन लोग का बहुत ज़्यादा अहम किरदार होता है। घर वालों को चाहिए कि मरीज को अगर अलामत नज़र आए तो मरीज़ को वक्त पर साइकियाट्रिस्ट कन लेकर जाए। अगर मरीज़ दवा लेने के लिए तैयार है तो गोलियों के ज़रिए या फिर डीपो इंजेक्शन जो 4 हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार लगाए जा सकते हैं,
1: अच्छा।
0: इसके ज़रिए से इलाज हो सकता है। अगर मरीज दवा लेने से इनकार कर दे तो अपने साइकियाट्रिस्ट से मशवरा करे। घर वालों के ऊपर लाजिम है कि मरीज तक दवा किसी ना किसी तरीके से पहुंच जाए।
1: डॉक्टर उस्मा, इसी तरह की और बीमारियों के बारे में क्या आप कहना चाहेंगी? डॉक्टर उस्मा, इस तरह की और बीमारी OCD क्या है और ये बीमारी क्यों हो जाती है, इस बारे में आप हमारे सामाइन को बतलाइए।
0: जी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज के जहन में कोई ख्याल, वसवसा या शक बार बार आता है, हालांकि मरीज इस ख्याल से खुद को बचाना चाहता है, इस ख्याल को झटकना चाहता है, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी नाकाम रहता है। इसको हम ऑब्सेशन कहते हैं।
1: जी, अच्छा।
0: और जो इस ख्याल की वजह से मरीज एक काम बार बार दोहराता है उसको हम कंपल्शन कहते हैं। मरीज को दिन भर ये ख्याल आता है कि उनके हाथ जरासीम या गर्द में आलूदा है
1: जी।
0: जिसको ऑब्सेशन कहते हैं
1: जी।
0: जिसकी वजह से वो बार बार हाथ धोते हैं दिन में बेशुमार दफा, जिसको हम कंपल्शन कहते हैं।
1: जी, अच्छा। OCD किस हद तक शदीद हो सकता है?
0: OCD अगर शदीद हो जाए तो मरीज़ के लिए बाकायदगी से काम करना, घर वालों के साथ वक्त गुजारना, ख़ानदान के मामलात में दिलचस्पी देना नामुमकिन हो जाता है। शिद्दत इतनी बढ़ सकती है कि मरीज़ अपने कंपल्शन यानी अपनी जो हरकत वो करते हैं बार बार उसमें घर वालों को भी शामिल करने की कोशिश कर सकता है।
1: डॉक्टर उज़्मा, आप हमारे सामईन को इस ताल्लुक़ से कुछ पैगाम देना चाहेंगी?
0: जी, जिस तरह से जिस्मानी बीमारियाँ होती हैं उनका इलाज कराने की ज़रूरत होती है, उसी तरह से जहनी बीमारियां भी होती हैं। हालांकि बात यह है कि वो नज़र नहीं आती, लेकिन उनको भी इलाज की ज़रूरत होती है। जैसे कि हम कहते हैं कि अ नेगेटिव माइंड विल नेवर गिव यू अ पॉजिटिव लाइफ, यानी अगर आपका जहन ही ठीक तरतीब से ना सोचता हो ना महसूस करता हो तो आप एक खुशहाल ज़िंदगी जीना मुश्किल या नामुमकिन है। इसलिए अपने जहन की सेहतमंदी के लिए हमेशा खुश रहना सीखें। ज़िंदगी में बहुत से मुश्किलात आएंगे, बहुत से अप्स एंड डाउन्स आएंगे, इनसे डटकर मुकाबला करें और अपने जहन पर हावी होने ना दें। इंसान का जहनी तौर पर पुरसकून और खुश रहना एक बहुत बड़ी नेमत है।
1: आपने अपना कीमती वक्त निकाला, इसके लिए बेहद शुक्रिया।
0: शुक्रिया।
2: डॉक्टर माइक पर इस सिलसिले के तहत डॉक्टर उज़्मा बतूल से इंटरव्यू आपने सुना और इस इंटरव्यू का मौजू था डिप्रेशन, जहनी तनाव, और आपसे बातचीत की थी मोहतरमा रूहिना फातिमा ने। सामाइन, आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नायरंग और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी हैदराबाद FM 101.9 MHz। दोस्तों, आज 21 अगस्त है और हमारा, आप जानते हैं, आज के इस दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टम्स ऑफ टेररिज्म के तौर पर मनाया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि दहशतगर्दी सिर्फ जिस्मों को नहीं बल्कि दिलों और मुआशरों को भी जख्मी करती है। ये दिन उन बेगुनाह जानों के लिए वक्फ है जिन्होंने दहशतगर्दी के हाथों अपनी जिंदगी खो दी, और उन खानदानों के लिए है जो सब्र और हौसले के साथ अपने जख्मों को सहते हैं।

याद रखना, याददाश्त इंसानियत की बखा है। जब हम शहदा को याद करते हैं तो हम जुल्म के खिलाफ अपनी इज्तिमाई आवाज़ को ज़िंदा रखते हैं। ये दिन उन जानों के लिए है जिन्होंने दहशतगर्दी के ज़रिए अपनी जानें खोईं। खराज अकीदत पेश करना ये सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि इंसाफ और अमन के लिए अहद की तजदीद है। वक्त और यादें, वक्त ज़ख्मों को मुनम्बिल करता है मगर यादें हमें बेदार रखती हैं कि अमन की हिफाजत करना हमारी ज़िम्मेदारी है।

International Day of Remembrance and Tribute to the Victims of Terrorism, इस मौजू पर हमने आपसे बातचीत की सामाइन, दहशतगर्दी के मुतासरीन की याद और उनको खिराज अकीदत पेश करने का आलमी दिन जो कि 21 अगस्त को मनाया जाता है, इस दिन के अहमियत के बारे में हमने आपको बताया। सामाइन, आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नायरंग और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी हैदराबाद FM 101.9 MHz। हमारी ये नशरियात आप तक पहुंच रही हैं मोबाइल ऐप के ज़रिए जिसका नाम है न्यूज़ ऑन AIR। प्रोग्राम नारंग में सामाइन, अब आइए सुनते हैं गीत सुरीले गाता जा। जी हाँ सामाइन, पेश खिदमत है गीत सुरीले गाता जा। बहुत सा प्यार आप सभी सुनने वालों को। रेडियो की खूबसूरत दुनिया के तमाम बावफा और प्यारे सामाइन को आपके अपने मेज़बान का आदाब। आप सुन रहे हैं आपका अपना मन पसंद और दिल अजीज़ प्रोग्राम जो कि नायरंग में पेश किया जाता है। हमारी मुराद है गीत सुरीले गाता जा से। कहते हैं कि लफ्ज़ों का पास रखना और किसी से किया हुआ वादा निभाना इंसानी ताल्लुकात की सबसे मजबूत बुनियाद होता है। एक सच्चा वादा दिलों को आपस में जोड़ देता है और उम्मीद की एक ऐसी शमा रोशन करता है जो वक्त की आंधियों में भी नहीं बुझती। इसलिए आज के इस खूबसूरत और एहसास से भरपूर शो में हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है वादा। तो बस अपने तमाम कामकाज को थोड़ी देर के लिए एक तरफ रखिए, सुकून से बैठ जाइए और वादों, इकरारों और सच्ची मोहब्बत से बने इन नगमों का लुत्फ़ उठाइए। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं एक ऐसे सहरंगेज़ और क्लासिक नगमे के साथ जो हमें याद दिलाता है कि जब दिल से कोई वादा किया जाए तो उसे हर कीमत पर पूरा करना ही मोहब्बत का असल इम्तिहान होता है। आइए सुनते हैं ये शाहकार गीत।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में ये खूबसूरत सा गीत आपने सुना। आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नए रंग, और नए रंग में गीत सुरीले गाता जा का सफ़र जारी है। और आज का ये सफ़र बना है वादों से। वादा महज अल्फाज नहीं बल्कि दो दिलों के दरमियान एक ऐसा अहद है जो वक्त, फासले और हालात से बालातर हो जाता है। एक दूसरे के बगैर ना रहने का वादा दरअसल जिंदगी को एक दूसरे के वजूद से बांधने का नाम है। ये वादा हमें याद दिलाता है कि मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं बल्कि एक दूसरे के बगैर अधूरा होने का एहसास है।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में हाथ की सफाई फिल्म से लिया गया गीत आपने सुना। आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नए रंग, और नए रंग में पेश किया जा रहा है सुरीले गीतों का प्रोग्राम। गीत सुरीले गाता जा और बात चली है वादों की। सुनते रहिए आकाशवाणी हैदराबाद। दोस्तों, बाज़ औक़ात वादा सिर्फ मिलने का या साथ निभाने का नहीं होता, बल्कि दुख सुख में एक दूसरे का साया बनकर खड़े रहने का होता है। जब इंसान को ये यकीन हो जाए कि कोई अपना हर मोड़ पर उसके साथ खड़ा है, तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसान लगने लगती है। चलिए इसी खूबसूरत इकरार की अक्कासी करता हुआ अगला नगमा सुनते हैं।

मोहम्मद रफ़ी को आपने सुना हम किसी से कम नहीं फिल्म में। बात चली है वादों की। एक वादा ये भी होता है कि एक दूसरे से जुदा ना हो। ये एक ऐसा एहसास है इंसान के दिल को एक अजीब सा इत्मीनान देता है और हौसला देता है जब कोई अपना पूरे खुलूस से ये वादा करे कि रास्ते में कितने ही तूफान आएं या वक्त के धारे बदल जाएं, हमारा साथ और मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होगी। तो फिर बड़ी से बड़ी मुश्किल भी छोटी लगने लगती है। ना जुदा होने का ये वादा सिर्फ लफ्ज़ों का खेल नहीं होता, बल्कि ये दो रूहों का एक दूसरे पर वो कामिल एतमाद है जो वक्त, फासलों और हालात पर फतह हासिल कर लेता है।

0: अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज़ों में खिलाड़ी फिल्म का नगमा आपने सुना। गीत सुरीले गाता जा में हमने वादे और इरादे के एहसासों पर फिल्मी नगमे पेश किए। वक्त इतनी तेज़ी से गुज़रा कि पता ही नहीं चला, और अब गीत सुरीले गाता जा का ये सफ़र अपने अख्तिताम को पहुंच रहा है। जाने से पहले बस इतना ही कहूंगा कि वादा सोच समझ कर कीजिए, लेकिन जब एक बार वादा कर लें तो फिर उसे निभाने की पूरी कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका एक वादा किसी के दिल की उम्मीद बन सकता है। समाइन प्रोग्राम नयरंग में गीत सुरीले गाता जा के बाद आइए सुनते हैं एक पैगाम।
1: अपने हैदराबाद का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा, हैदराबाद तो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा, यहाँ पे फ्यूचर सिटी भी बनने वाला है। यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंगा बन रही, कंपनियाँ खोल रही, लोगों की सहूलत के वास्ते रोडा, फ्लाईओवरा और ब्रिजा बनाते जा रहे। जिधर देखो उधर महंगे महंगे गाड़ियाँ भागते हुए दिख रही। तरक्की तो बहुत हो रही मगर एक्सीडेंट भी हो रहे। ट्रैफिक पुलिस और लोगों की भलाई के वास्ते काम करने वाले तंजीमा अपनी पब्लिक को ट्रैफिक रूल्स बता बता के थक जा रहे। हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट पहनो, एक्सीडेंटों से बचो बोल रहे, मगर अपने हैदराबादियाँ हैं कि सुन रही नहीं। चालाना मारे तो भी पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे को बस इतना ही बोलना है, रोडों पे गाड़ियाँ नको भगाओ, सीट बेल्ट और हेलमेट पहन के गाड़ियाँ चलाओ। अपन जब घर से निकलते तो अपने घर वाले अपने घर को आने का इंतज़ार करते रहते। अगर बगैर हेलमेट के और बगैर सीट बेल्ट के अगर गाड़ियाँ चलाएंगे तो घर को तो बाद में, पहले उस्मानिया नहीं तो गांधी को पहुँच जाते। रोड सेफ्टी अपने साथ साथ दूसरे लोगों के वास्ते भी बहुत ज़रूरी है, तो रोड सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करो, घर को सही सलामत पहुँचो, हेलमेट और सीट बेल्ट पहन के गाड़ियाँ चलाओ।
0: नारंग प्रोग्राम में आखिर में आइए सुनते हैं। आखिर में सुनते हैं पयाम-ए-शब्बा।

0: इंसान को दूसरों की कमज़ोरियों, नाकामियों और हालात पर तबसरा करने से पहले अपने गिरेबान में ज़रूर झांकना चाहिए। ज़िंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं जब इंसान खुद अंदर से बिखर रहा होता है, मगर फिर भी दूसरों के मामलात पर ऐसे फैसले सुनाता है जैसे उसे हर हकीकत का इल्म हो। हमें ये समझना चाहिए कि हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक कहानी होती है और हर खामोश शख्स के अंदर एक जंग जारी हो सकती है। इसीलिए किसी के हालात जाने बगैर उस पर तनकीद करना, उसे कमतर समझना या खुद को उससे बेहतर समझना मुनासिब नहीं। दूसरों को नसीहत करने से पहले अपने किरदार को देखना चाहिए। खुदाई अंदाज के फैसले सुनाना आसान है, लेकिन इंसान बनकर किसी के दर्द को समझना बड़ी बात है।
1: पयाम शब अभी आपने सुना। इसी के साथ सामाइन उर्दू प्रोग्राम नए रंग अपने अख्तिताम को पहुंचता है। चंद ही लम्हों में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी समाचार दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया में विकास और संसाधनों को लेकर कई चिंताओं के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विकास के उज्जवल उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है। नई दिल्ली में आज शाम इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड्स लीडर फोरम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत विकास की गति बनाए रखने के लिए लगातार कई कदम उठा रहा है और सुधारों के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों की नीति लोगों को अभाव में रखने की थी, ताकि वे बुनियादी जरूरतों के लिए भी सरकार के सामने हाथ फैलाने को मजबूर रहें।

0: श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार केवल नियमों में बदलाव नहीं कर रही बल्कि नियमों से जुड़ी पूरी नीति में बदलाव ला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के नवनिर्मित भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 20 बिस्तरों वाला नशा मुक्ति केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के 3 नए आपराधिक कानूनों से नागरिकों की सुरक्षा और मजबूत होगी। श्री शाह ने कहा कि भाजपा के लिए देश, राज्य और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता।
0: श्री शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के बारे में कहा कि पुराने दंड कानूनों को समाप्त कर नई भारतीय न्याय संहिता बनाई गई है जो प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और समय सीमा पर आधारित है। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, हालांकि इसका उत्पादन अनुमान से कम रहने की संभावना है। सरकार ने चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को देखते हुए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतें स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि वह स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के इस्तेमाल से जोड़ना सही नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले महीने की 5 तारीख को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की चयन प्रक्रिया के जरिए किया गया है। पुरस्कार के लिए चुने गए 48 शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से हैं। इनमें 26 पुरुष और 22 महिला शिक्षक शामिल हैं। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स में चीन की यी फैन और झांग शू की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज Read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi has said India is being seen as a bright spot of growth throughout the globe, even as the world has many concerns regarding growth and resources are getting weaponized. Addressing the Economic Times World Leaders Forum in New Delhi this evening, the Prime Minister said, India continues to take several steps to ensure continued growth momentum and reforms are commitment of his government.
3: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा। लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्रा कार्यक्रम में आज के कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ

0: एके भट्टाचार्य, एके भी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।
0: और सबसे पहले मुख्य समाचार।
2: Benchmark domestic stock market indices end on a flat note. Sensex settles at 77,541. Nifty adds 20 points. India's foreign exchange reserves rise by $9.9 billion in the week ending August 14. And global crude oil prices rise.
0: घरेलू शेयर बाजार सूचकांक आज लगभग सपाट बंद हुए। सेंसेक्स 77,541 पर पहुंचा, जबकि निफ्टी में 20 अंक की तेजी आई। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 14 अगस्त को समाप्त हुए सप्ताह में 9.90 अरब अमेरिकी डॉलर बढ़ा और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल।

0: And before we take our main stories in detail, here is a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और बढ़ते हैं अब खबरों की तरफ. देश के प्रमुख घरेलू शेयर बाजार सूचकांक आज लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में मामूली बढ़त दर्ज करते हुए लगभग सपाट बंद हुए. सेंसेक्स 3 अंक की बढ़त के साथ 77,541 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 20 अंक की तेजी दर्ज करता हुआ 24,252 पर पहुंच गया. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में मिड कैप सूचकांक में 0.10% और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.07% का उछाल देखा गया. बाजार आज सुबह सकारात्मक रुख के साथ खुले, लेकिन पूरे दिन सीमित दायरे में कारोबार हुआ. भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और वैश्विक बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी तथा कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के कारण बाजार पर दबाव भी बना रहा.
0: Benchmark domestic equity indices ended flat with a positive bias today. Sensex added 3 points to close at 77,541. Nifty rose by 20 points to settle at 24,252. In the broader market at the NSE, the mid-cap 100 index gained 0.10%, while the small-cap 100 index increased by 0.7%. Opening on a positive note in the morning, markets witnessed range-bound trading throughout the day due to geopolitical uncertainties, elevated global bond yields and high crude oil prices.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 16 कंपनियों के शेयर आज गिरावट के साथ बंद हुए. प्रमुख कमजोर शेयरों में ट्रेंट और मारुति में 1.51% से अधिक की गिरावट आई, जबकि इंडिगो 1.35% और एचसीएल टेक्नोलॉजी में 1.2% का गिरावट देखी गई. वहीं तेजी वाले शेयरों में पावर ग्रिड 2.66%, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 1.17% और कोटक महिंद्रा बैंक 1.08% में लाभ देखा गया.
0: In the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 17 out of the 28 sectors registered gains. The top gainers were insurance that rose by 0.94%, utilities as well as mid-small private banks, a quality tilt around 0.7%, mid-small private banks added 0.65%. Among the laggards, FMCG and auto shed 0.68%, housing finance fell by 0.61%, while hospitals lost 0.5%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was positive as shares of 2,240 companies advanced, 2,093 companies declined, and shares of 231 companies remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में लगभग सपाट रहते हुए 95.71 रुपए पर बंद हुआ. एकेबी कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है.
2: नमस्कार.
1: मार्केट में आज लगातार दूसरे दिन एक सकारात्मक रुख देखा गया. इससे क्या ये मानकर चलना चाहिए कि सीमित दायरे में कारोबार किया जा रहा है या फिर बाजार में कहीं कोई तेजी आने की संभावना नजर आ रही है?
2: देखिए, सीमित दायरे में काम किया जा रहा है. जो धंधा लोग कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट निवेश कर रहे हैं, सीमित दौर से काम कर रहे हैं. जो दो तीन जो ट्रेंड जो है वो अभी भी मार्केट के मूवमेंट को इन्फ्लुएंस कर रही है. पहली बात तो यह है कि जो विश्व की जो राजनीतिक परिस्थिति है उसमें की जो अनिश्चयता. दूसरी कारण यह है कि जो बाजार में वैश्विक बाजार में जो जो बॉन्ड मार्केट में जो थोड़ा खलबली तो नहीं कहूँगा मैं, पर उसके यील्ड में जो उसका मतलब जो इंटरेस्ट रेट का बढ़ना

0: merchandise goods exports. So therefore, the duality of the Indian economy is once again getting reflected in these PMI numbers.
1: एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कोस्पी आज 0.87% ऊपर चढ़ा, जबकि जापान का निकेई 225 आज 0.30% की गिरावट के साथ बंद हुआ। आर्थिक मोर्चे पर जापान की मुख्य मुद्रास्फीति जुलाई में सालाना आधार पर 1.8% बढ़ी, जबकि जून में ये 1.6% थी। ये लगातार सातवां महीना रहा जब ऊर्जा की कीमतों को शामिल करने, लेकिन ताजा खाद्य पदार्थों को कीमतों से बाहर रखने वाली मुख्य मुद्रास्फीति बैंक ऑफ जापान के 2% के लक्ष्य से नीचे रही। इस बीच ताजा खाद्य पदार्थों और ईंधन की कीमतों को बाहर रखने वाली प्रमुख मुद्रास्फीति जुलाई में सालाना आधार पर 1.9% बढ़ी है।
2: एकेबी जापान्स कोर इन्फ्लेशन व्हिच इज रियली कंप्यूटेड ऑन दोस आइटम्स व्हिच फेस वोलेटिलिटी व्हेन वी टॉकिंग अबाउट फूड एंड फ्यूल इज स्टिल बिलो द बैंक ऑफ जापान्स 2% target. What's the state of Japan's economy? It is an industrialized country, but the yen has weakened earlier. It was strengthened by the US. It is used for carryover trade. So give us your comment on what's happening in Japan.
0: Don't look at Japan by the yardstick that we often use for a developing economy. Japan is a company, as an economy, is known for its deflation. Japan has not seen inflation for the last several years. This is probably a new thing for Japan, where it is seeing an inflation, and even though it is below the 2% target, people are a little worried. And why is it happening? It's because Japan has clearly embarked on a new economic development strategy where more money is being pumped into to ramp up its pace of economic activity, which naturally is engendering this kind of inflationary potential in the economy. So it's a little bit of inflation, less than 2%, is a good sign for any economy. And I would say that there is also no panic. And if you see that, its stock market is also not reflecting any panic reaction to an inflation which is less than 2%.
2: So the Japanese are concerned because it's linked to wages. They want higher wages.
0: So if it is 2% or 1.5% or 1%, they expect better wages. So very simple.
1: सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, हालांकि इसका उत्पादन अनुमान से कम रहने की संभावना है। सरकार ने चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को देखते हुए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतें स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि वो स्थिति पर करीबी से नजर रख रहा है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में चीनी की कीमत बढ़ी है। पिछले महीने की 20 तारीख को चीनी की कीमत 48 रुपये प्रति किलोग्राम थी, जो कल बढ़कर करीब 55 रुपये प्रति किलोग्राम पर हो गई। एक ही भी इस खबर पर आपके क्या विचार होंगे, क्या कहना चाहेंगे आप?
0: देखिए, जो हुआ है वो तो जो अक्टूबर से सितंबर का जो शुगर सीजन जो है उसमें जो स्टॉक लेवल जो सितंबर में आएगी वो लेवल जो कंफर्टेबल लेवल जो होता है उससे करीबन 1 मिलियन टन और 1.5 मिलियन टन कम होगा। इसीलिए सरकार का प्लान भी है कि वो रॉ शुगर 0% ड्यूटी में इंपोर्ट करने का भी उन्होंने एक निर्णय लिया है। वो अगर 1 मिलियन टन इंपोर्ट आ जाए उससे ज़रूर हमारी जो डोमेस्टिक शुगर प्राइसेस की जो स्थिति जो है उसमें कुछ कंट्रोल आएगी। पर उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि जो शुगर की जो एक डिमांड जो है वो इथेनॉल की सेक्टर को करीबन 2.4 मिलियन टन को इथेनॉल को जाती है, तो वो उससे भी ये प्रेशर बढ़ गया है। और क्योंकि इंपोर्ट का निर्णय लिया गया है, जो शुगर स्टॉक्स जो है अगर आप देखें स्टॉक मार्केट में आज की तारीख में शुगर स्टॉक्स में भी काफ़ी एक एडवर्स इम्पैक्ट आया है, क्योंकि जो शुगर कंपनियाँ जो हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ी बहुत कमी आएगी, इंपोर्ट आने से उनके दाम घट जाएंगे। तो ये एक सार्वजनिक दृष्टिकोण है, पर मैं समझता हूँ कि शुगर इकोनॉमी एक बहुत बड़ी एक आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत एक महत्वपूर्ण सेक्टर है।
1: जी,
2: In more news, the unincorporated establishments in the non-agriculture sector continue their growth momentum in the first

0: इशारा कर रहा है कि गोल्ड के दामों में और भी वृद्धि आने वाली है।
1: देखिए भी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
2: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic stock market indices end on a flat note. Sensex settled at 77,541. Nifty adds 20 points. India's foreign exchange reserves rise by $9.9 billion in the week ending August 14. And global crude oil prices rise. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.
1: Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। दोस्तों, आपका पसंदीदा गीत मेरे मन मीत लेकर एक बार फिर स्टूडियो से साथ हूं मैं रोहिणी। कहते हैं मन की बातें गीतों के अंदाज में बयां हों तो दिल को और भी गहराई से छू जाती हैं। आज का गीत मेरे मन मीत कुछ इसी अंदाज में सजा है और कुछ यही अंदाज बयां कर रहा है। बड़े प्यारे अल्फाज हैं कि नजरों की बातें नजरों से कहां होती हैं, ये तो दिल से दिल की राह होती है। इन राहों पर चलते चलते 100.1 मेगाहर्ट्ज पर खुद ब खुद हो जाती है। जी हाँ, आइए आज के मनमीत गीत मेरे मनमीत को बनाते हैं कुछ बहुत खास और चुरा लेते हैं इन गीतों के अंदाज से आपका भी दिल। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आइए आगाज करें आज के गीत मेरे मनमीत का इस गीत के साथ, जो कि रचा बसा है आशा जी और रफी जी की आवाज में। इस गीत को अल्फाज दिए थे मजरू सुल्तानपुरी साहब ने और संगीतबद्ध किया था आरजी बर्मन जी ने। यादों की बारात फिल्म से ये गीत आप सुनेंगे, गीत मेरे मनमीत में 100.1 मेगाहर्ट्ज पर।

जी श्रोताओं, 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये सदाबहार गीत यूं ही आपका मन चुराने आए हैं और चुराते रहेंगे। बड़े ही प्यारे अल्फाज हैं कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। जी हाँ, कुछ दीवानगियां इस अंदाज में भी बयां होती हैं। जिंदगी में कुछ करना है तो खुद से वादा निभाना होता है, हर हाल में आगे बढ़ना और हर मुश्किल से टकराना होता है। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर जी हाँ, बेहद सदाबहार, बेहद प्यारे गीतों का अंदाज आप सुन रहे हैं। ये अगला गीत हम किसी से कम नहीं फिल्म से आप सुनेंगे। आशा जी और रफी जी की आवाज में इस गीत को अल्फाज से सजाया है मजरू सुल्तानपुरी साहब ने और संगीत दिया है आटी पामन जी ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का

करता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर

मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

101.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं दोस्तों गीत मेरे मन में दिल। लेकिन फिलहाल आज इसे यहीं समेटती हूं और आपको छोड़े जाती हूं एक बेहद प्यारे से गीत के साथ जो कि है रफी साहब की आवाज में। फिलहाल मुझे यानी रोहिणी को दीजिए इजाजत। तो शुभ रात्रि, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एक अच्छी सी नींद लीजिए। लेकिन फिलहाल सुनते जाइए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल को।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया में आर्थिक चुनौतियों के बीच भारत को विकास की एक बड़ी उम्मीद के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सुधार उनकी सरकार की प्रतिबद्धता है और भारत विकास की गति बनाए रखने के लिए लगातार कदम उठा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार केवल नियमों में बदलाव नहीं ला रही बल्कि नियमों की पूरी नीति में बदलाव ला रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत हमेशा से साझा भविष्य की कामना में विश्वास करता आया है।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं और इन अनुभवों ने एक बात बहुत स्पष्ट कर दी है, कोई चाहे या न चाहे हर देश का भविष्य, उसका फ्यूचर एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही है। आइसोलेशन में कुछ संभव नहीं है, इसलिए शेयर्ड फ्यूचर्स की ये थीम आज और भी अधिक प्रासंगिक हो गई है। और भारत तो हमेशा से

0: इसी भावना को लेकर चला है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़ी 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के नवनिर्मित भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 20 बिस्तरों वाले नशा मुक्ति केंद्र का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता BNS के 3 नए आपराधिक कानूनों से नागरिकों की सुरक्षा और मजबूत होगी। श्री शाह ने कहा कि भाजपा के लिए देश, राज्य और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पास स्वास्थ्य सेवा उन्नत बनाने का एक अनूठा अवसर है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि तकनीकी उपलब्धियां सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हों। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत का चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र वर्तमान में लगभग $12 अरब का है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल मोबाइल फोन विनिर्माण योजना MPMS का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 62,500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ इस योजना को मंजूरी दी। मंत्रालय ने इस योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी, AI, संचार, विनिर्माण, औषधि, डेटा सेंटर और परिवहन सेवाओं सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। महिला हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण के अपने पहले मुकाबले में भारत को नीदरलैंड से हार का सामना करना पड़ा। अम्स्टरडैम में खेले गए मुकाबले में नीदरलैंड्स ने भारत को 0-2 से हरा दिया। भारत की ये टूर्नामेंट में पहली हार है। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स में चीन की यी फेन और झांग शू की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज निशिगंधा की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्यारे गीत के साथ। फिल्म का नाम है सच्चा झूठा और आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। आइए सुनते हैं ये गीत।
1: यूं ही तुम मुझसे बात

आप सुन रहे हैं निशिगंधा, और निशिगंधा में आज कुछ ऐसी बातें आपके साथ साझा करते हैं जिन पर बात करना हम भूल जाते हैं। अक्सर क्या होता है ना कि हम खुद को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं, अच्छा दिखना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, हम अच्छा करना चाहते हैं, खुद को अच्छा साबित करना चाहते हैं और साथ ही हम अच्छा दिखना भी चाहते हैं। पर अच्छा हम कैसे दिख सकते हैं, ये जो पैमाना है ना, ये हर इंसान अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेता है। कुछ लोग खुद को संवार कर अच्छा दिखना चाहते हैं, कुछ अपने कर्मों को इतना अच्छा करते हैं कि उससे उनकी पर्सनालिटी में, उनके व्यक्तित्व में एक ग्रेस आ जाता है जिसके कारण वो अच्छा दिखते हैं। चेहरे की चमक जो होती है ना, वो कुछ सालों की मेहमान होती है, मगर आपके बिहेवियर की, आपके व्यवहार की खूबसूरती उम्र के साथ बढ़ती है। किस नरमी से बात करना है, कैसे बात करना है, ये भी आपके व्यक्तित्व की एक खूबसूरती होती है। किसी की परेशानी समझ लेना भी एक कला है। और कहते हैं ना कि ऐसा भी देखा गया है कि हर खूबसूरत इंसान आकर्षक नहीं होता, मगर एक अच्छा व्यवहार जो है, अच्छे व्यवहार वाला व्यक्ति आकर्षक भी होता है और वो याद भी रहता है। इसलिए जब भी खुद को देखना हो ना, तो कभी भी सिर्फ आईने में खुद को मत देखिए, यह भी देखिए कि आपके कारण कितने मन हल्के हुए, कितने लोगों के अंदर आपसे मिलने की

दोबारा की चाहत जो है वो पैदा हुई। कितनी आंखों में आपने भरोसा जगाया, कितने रिश्तों को आपने प्रेम से बचाए रखा। और रात जब आपको मौका दे तो खुद से आप ये सवाल जरूर करिए, मैं सुंदर दिखती हूँ कि नहीं, ये सवाल नहीं, सुंदर बनती कितनी हूँ ये भी सवाल नहीं, ये कि मैंने कितने मन को सुंदर बना दिया है, ये सवाल खुद से करिए। चेहरा तो वक्त के साथ बदल ही जाता है, चेहरा तो वक्त के साथ बदल ही जाता है, किरदार ही है जो उम्र भर याद आता है, किरदार ही है जो उम्र भर याद आता है। अगला गीत फिल्म वक्त से, आवाज है महेंद्र कपूर और आशा भोसले की, आइए सुनते हैं ये गीत।

जिस समस्या से हम सभी ग्रस्त हैं। बात जब आती है संबंधों को चुनने की, दोस्त चुनने की, साथी चुनने की, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर हमसे कोई सवाल पूछे कि आपका एक बहुत अच्छा, एक सच्चा साथी कौन है, एक अच्छा दोस्त कौन है, तो शायद अगर आप ईमानदार उत्तर तलाश करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास वो ईमानदार उत्तर नहीं होगा। आप सोचने लगेंगे कि सच्चे साथी की परिभाषा क्या होती है, सच्चे दोस्त की परिभाषा क्या होती है। सच्चा साथी वो नहीं होता जो हर पल आपके आसपास घूमता रहे या आपके आसपास रहे। सच्चा साथी, सच्चा दोस्त वो भी होता है जो दूर होकर भी आपके पास होने का एहसास दिलाए, जिसके सामने आपको किसी भी तरह का कोई अभिनय न करना पड़े। आप जो हैं बिल्कुल उस तरह से उसके सामने जाकर आप अपने आप को प्रेजेंट कर सके। और हाँ, एक सबसे जरूरी बात, सच्चा साथी, सच्चा दोस्त वो है जिसके सामने अगर आपके व्यक्तित्व का कोई सबसे कमजोर पहलू है, वो बताने में किसी तरह का कोई डर ना हो, और साथ ही सफलता साझा करने में आपको कोई हिचक भी ना हो। जहां प्रेम के साथ मित्रता हो, मित्रता के साथ प्रेम हो, ऐसा रिश्ता जो है ना, वो बहुत शोर शराबा नहीं करता। बस धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता दोनों के जीवन को सुंदर बनाता चला जाता है। और सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है साथ होने से भी, वो है सहज होना। जिसके साथ होकर आप सहज महसूस कर सकें, सरल महसूस कर सकें, वही रिश्ता आपका सबसे सच्चा रिश्ता होता है, सबसे सच्चा दोस्त होता है। और प्रेम में सबसे दुर्लभ बात जो होती है ना, वो आकर्षण नहीं होती है, सबसे दुर्लभ बात है भरोसे का होना। और भरोसा मिले तो साधारण से साधारण दिखने वाला व्यक्ति भी खास हो जाता है। कहते हैं कि साथ ऐसा हो कि दूरी भी पास लगती रहे, साथ ऐसा हो कि दूरी भी पास लगती रहे, दिल की दुनिया में कोई ना कोई आस जगती रहे, दिल की दुनिया में कोई ना कोई आस जगती रहे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा, और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं, जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है कॉलेज गर्ल, तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयति। और निशिगंधा का अगला गीत फिल्म बॉबी से, आवाज है शैलेंद्र सिंह की। आइए सुनते हैं ये गीत।

कितनी सुंदर बात है ना कि हमें कभी भी किसी की जिंदगी को देखकर अपनी जिंदगी का फैसला नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी के जीवन में सफलता जो है वो जल्दी मिलती है और किसी की देर से, मगर देर से मिली सफलता का अर्थ जो है वो हार नहीं है। आपको किसी और के जैसा बनने की भी जरूरत नहीं है, आपको बस अपने बेहतर रूप तक पहुंच जाना है। किसी भी तस्वीर के पीछे की कहानी क्या है ये हम नहीं जानते, इसलिए अपने जीवन को दूसरों के दिखते हुए जीवन के अनुसार कभी भी तौलना समझदारी नहीं कही जा सकती। आज हमने अपने कल से एक कदम अगर आगे बढ़ाया तो हम थोड़ा आगे चले और वो हमारी अपनी जीत है। तो इसलिए कहते हैं कि रात को जब भी हम सोने जाएं ना, तो सोने से पहले तीन अपनी छोटी बड़ी उपलब्धियों को जरूर याद करें। मन को तुलना से नहीं, कृतज्ञता के साथ में सोने दीजिए। दूसरों की राह देखकर खुद को कम ना आंख, दूसरों की राह देखकर खुद को कम ना आंख, तेरी मंजिल का रास्ता भी अनोखा है, तेरी मंजिल का रास्ता भी अनोखा है। अगला गीत आशा भोसले की आवाज में, फिल्म लव स्टोरी से।

एक बहुत खूबसूरत सी लाइन है कि गिला रखा तो दिल जगह घेरता गया, गिला रखा तो दिल में जगह घेरता गया, माफ किया तो रास्ता मेरा साफ हो गया। जनाब, ये जो माफ करने की बात होती है ना, ये अक्सर हमारे डेली रूटीन में, डेली लाइफ में हम सुनते रहते हैं कि जब भी किसी ने गलती की तो एक बात सुनाई देती है, माफ करो और आगे बढ़ो। पर ये माफ करना हमेशा दूसरों के लिए नहीं होता। कि अगर हमने माफ करने को अपनी आदत में शामिल किया तो ये हमेशा दूसरों के लिए नहीं है, ये कभी कभी अपने मन को मुक्त करने के लिए भी माफ करना देखा जाता है। जिसने दुख दिया उसके व्यवहार को सही नहीं कह सकते। अगर आपने माफ कर दिया, इसका मतलब ये नहीं था कि उसका व्यवहार सही था, बस उसके कारण अपने भीतर की कड़वाहट को हमने जाने दिया। कुछ लोग हमारे जीवन में बहुत सारा प्यार लेकर आते हैं और कुछ लोग बहुत सारी सीख लेकर के आते हैं। दोनों की ही भूमिका बिल्कुल अलग होती है। और साथ ही एक बात और भी यहां पर होती है कि ये जो दो लोग आते हैं जीवन में, इनके साथ एक तीसरे तरह की भी लोग आते हैं, जहां जाकर हम कहते हैं कि हर रिश्ता उम्र भर साथ चलने के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते हमें खुद की कीमत समझाने के लिए भी हमारे जीवन में आते हैं, इसलिए बीते हुए लोगों को याद करते समय अपने वर्तमान के साथ अन्याय मत करिए। अपने जीवन को जीने का, अपने जीवन में आगे बढ़ने का हर व्यक्ति का अपना अधिकार होता है, और जो इसे याद करके आगे बढ़ते हैं ना, सफलता उनके ही कदम को चूमती है। इसलिए कुछ भी करिए, खुद को कभी भूलने मत दीजिए। रात आती है हमें याद दिलाने के लिए कि हमें खुद के साथ कितना वक्त खुद के लिए बिताना है। इसलिए माफ करना आदत में जरूर हो, लेकिन माफ करने का मतलब ये नहीं कि आप अपने जीवन पर इस बोझ के साथ रहें कि हमने माफ करके कहीं को गलती तो नहीं कर दी। जनाब, माफ करना इसलिए कि हम अपने मन के अंदर किसी कड़वाहट को जगह नहीं दे सकते। माफ करना बोझ बनकर हमारे दिल पर कभी घर नहीं बना सकता। सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर निशिगंधा, और वक्त आ चला है कि हम आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 1 बजे एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर। कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ। आवाज है यशुदास की और फिल्म का नाम है टूटे खिलौने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया में आर्थिक चुनौतियों के बीच भारत को विकास की एक बड़ी उम्मीद के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सुधार उनकी सरकार की प्रतिबद्धता है और भारत विकास की गति बनाए रखने के लिए लगातार कदम उठा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार केवल नियमों में बदलाव नहीं कर रही, बल्कि नियमों की पूरी नीति में बदलाव ला रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत हमेशा से साझा भविष्य की भावना में विश्वास करता आया है।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं और इन अनुभवों ने एक बात बहुत स्पष्ट कर दी है, कोई चाहे या न चाहे, हर देश का भविष्य, उसका फ्यूचर एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही है। आइसोलेशन में कुछ संभव नहीं है, इसलिए शेयर्ड फ्यूचर्स की ये थीम आज और भी अधिक प्रासंगिक हो गई है और भारत तो हमेशा से इसी भावना को लेकर चला है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में 3 नए आपराधिक

कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के नवनिर्मित भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 20 बिस्तरों वाले नशा मुक्ति केंद्र का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता BNS के 3 नए आपराधिक कानूनों से नागरिकों की सुरक्षा और मजबूत होगी। श्री शाह ने कहा कि भाजपा के लिए देश, राज्य और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले महीने की 5 तारीख को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगे। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की चयन प्रक्रिया के जरिए किया गया है। पुरस्कार के लिए चुने गए 48 शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से एक हैं। इनमें 26 पुरुष और 22 महिला शिक्षक शामिल हैं। पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पर्यटन क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेहतर इस्तेमाल करने की जरूरत है। जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक के बाद उन्होंने कहा कि अब पर्यटन को जिम्मेदारी के साथ बढ़ावा देने पर ध्यान देने की जरूरत है। भारतीय महिला पहलवान काजल डोचक ने लगातार दूसरी बार अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। महिलाओं के 76 किलोग्राम वर्ग में काजल ने फाइनल में चीन की जिंगरू सून को 7-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। उधर 72 किलोग्राम वर्ग में भारत की तनु शर्मा और 62 किलोग्राम वर्ग में सविता ने रजत पदक अपने नाम किया। महिला हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण के पूल ई मुकाबले में भारत को नीदरलैंड्स से हार का सामना करना पड़ा है। अम्स्टलफेन में खेले गए मुकाबले में नीदरलैंड्स ने भारत को 0-2 से हरा दिया है। भारत की ये टूर्नामेंट में पहली हार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

खुद को पोशीदा न रखो बंद कलियों की तरह, खुद को पोशीदा न रखो बंद कलियों की तरह, फूल कहते हैं सब लोग तुम्हें तो महका करो, फूल कहते हैं सब लोग तुम्हें तो महका करो। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत सुहाने की ये खूबसूरत महफिल और आपके साथ हूँ मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। गीत सुहाने की आज शुरुआत करते हैं जूली फिल्म के इस गीत के साथ और फिर करेंगे आपके साथ बहुत सारी बातें।

जाओ तसव्वुर में तस्वीर बना लेंगे, आ जाओ तसव्वुर में तस्वीर बना लेंगे, हम शाम जुदाई की तकदीर बना लेंगे। आ जाओ तसव्वुर में तस्वीर बना लेंगे, हम शाम जुदाई की तकदीर बना लेंगे। कैसे ही सही लेकिन कुछ ख्वाब हमें दे दो, कैसे ही सही लेकिन कुछ ख्वाब हमें दे दो, हम उनकी कोई रंगी ताबीर बना लेंगे, हम उनकी कोई रंगी ताबीर बना लेंगे। और अगला गीत फिल्म जानवर से, आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की, आइए सुनते हैं ये गीत।

रात के बाद नए दिन की सहर आएगी, रात के बाद नए दिन की सहर आएगी, दिन नहीं बदलेगा तारीख बदल जाएगी। रात के बाद नए दिन की सहर आएगी, दिन नहीं बदलेगा तारीख बदल जाएगी। हंसते हंसते कभी थक जाओ तो छुप के रो लो, हंसते हंसते कभी थक जाओ तो छुप के रो लो, ये हंसी भीग के कुछ और चमक जाएगी, ये हंसी भीग के कुछ और चमक जाएगी। वक्त नदियों को उछाले उड़ाए पर्वत, वक्त नदियों को उछाले कि उड़ाए पर्वत, उम्र का काम है गुजरना गुजर जाएगी, उम्र का काम गुजरना है गुजर जाएगी। रात के बाद नए दिन की सहर आएगी, दिन नहीं बदलेगा तारीख बदल जाएगी। अगला गीत एसपी बाला सुब्रमण्यम और आशा भोसले की आवाज में, फिल्म का नाम है सागर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। गीत सुहाने का अगला गीत फिल्म दोस्ती से आप सभी के लिए। आइए सुनते हैं ये गीत।

कोई गुलाब रखे, मेरी किताब दिल में ना कोई गुलाब रखे, बस नाम तेरा और कोई पाक जवाब रखे, बस नाम तेरा कोई और पाक जवाब रखे। मिट्टी की सादगी में जो खुशबू दुआ सी है, मिट्टी की सादगी में जो खुशबू दुआ सी है, वही हमारी चाहत का ऊंचा मकाम रखे, वही हमारी चाहत का ऊंचा मकाम रखे। जब जब समय की धूप हमारे करीब आए, जब जब समय की धूप हमारे करीब आए, विश्वास अप

अपनी चाह का गहरा मिसाल रखे, विश्वास अपनी चाह का गहरा मिसाल रखे, मेरी किताब दिल में ना कोई गुलाब रखे, बस नाम तेरा और कोई पाक जवाब रखे, बस नाम तेरा और कोई पाक जवाब रखे। और अगला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म का नाम है आएगा आने वाला।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और गीत सुहाने में हम कर रहे हैं आपके साथ बहुत सारी बातें।

रात ने धीमे से चांद से कहा, रात ने धीमे से चांद से कहा, तुम्हारी चुप्पी इतनी गहरी क्यों है? चांद मुस्कुराया, मैं हर उस दिल का आईना हूं जो बोल नहीं पाता, मैं हर उस दिल का आईना हूं जो बोल नहीं पाता। रात बोली, फिर ये तन्हाई किसकी है? रात बोली, फिर ये तन्हाई किसकी है? चांद ने उत्तर दिया, ये उन लफ्जों की है जो होठों तक आकर लौट जाते हैं। रात ठहरी, क्या कोई सुनता भी है इन्हें? चांद झुका, हाँ, जो रोशनी से नहीं एहसास से देखते हैं, जो रोशनी से नहीं एहसास से देखते हैं। रात ने आंचल फैलाया, तो आज मैं इन्हें समेट लूं? चांद ने सिर हिलाया, समेट लो वरना ये दर्द बन जाएंगे, समेट लो वरना ये दर्द बन जाएंगे। रात बोली, तुम हमेशा इतने शांत क्यों रहते हो? चांद ने कहा, क्योंकि शोर में सच्चाई नहीं होती, क्योंकि शोर में सच्चाई नहीं होती।

अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है तीन देवियां, आवाज है किशोर कुमार की। साथ ही हम आपको याद दिला दें कि अब

थोड़ी ही देर बाद यानी कि 2 बजे एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर। कार्यक्रम होगा रात सुरमई। फिलहाल छोड़े जाते हैं आपको जिस गीत के साथ। फिल्म का नाम है 3 देवियां, हम आपको बता चुके हैं, आवाज है किशोर कुमार की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल।

0: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर।
1: ये चीज खास मैंने उस अनजान देवी के नाम लिखी है जो शायद कहीं किसी जिंदगी के मोड़ पर मेरा इंतजार कर रही है, या यूं समझिए कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूं।

हकीकत कौन हो तुम बतलाओ, देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, जुल्फों में एक चेहरा कुछ जाहिर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया में आर्थिक चुनौतियों के बीच भारत को विकास की एक बड़ी उम्मीद के रूप में देख रहा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सुधार उनकी सरकार की प्रतिबद्धता है और भारत विकास की गति बनाए रखने के लिए लगातार कदम उठा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार केवल नियमों में बदलाव नहीं कर रही है, बल्कि नियमों की पूरी नीति में बदलाव ला रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत हमेशा से साझा भविष्य की भावना में विश्वास करता आया है।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं और इन अनुभवों ने एक बात बहुत स्पष्ट कर दी है, कोई चाहे या न चाहे, हर देश का भविष्य, उसका फ्यूचर एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही है। आइसोलेशन में कुछ संभव नहीं है, इसलिए शेयर्ड फ्यूचर्स की ये थीम आज और भी अधिक प्रासंगिक हो गई है और भारत तो हमेशा से इसी भावना को लेकर चला है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। सरकार ने फिर कहा है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। श्री जायसवाल ने विदेशी ध्वज वाले दो जहाजों से संबंधित घटना के बारे में कहा कि सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले महीने की 5 तारीख को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की चयन प्रक्रिया के जरिए किया गया है। पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पर्यटन क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेहतर इस्तेमाल करने की जरूरत है। जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक के बाद उन्होंने कहा कि अब पर्यटन को जिम्मेदारी के साथ बढ़ावा देने पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों में भारत में पर्यटकों की संख्या 3 गुना बढ़ी है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने ढाका के बंग भवन में बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। कार्यवाहक अध्यक्ष बैरिस्टर कैसल कमाल ने उन्हें शपथ दिलाई। बांग्लादेश में संसद में मतदान के माध्यम से अंतिम राष्ट्रपति चुनाव 8 अक्टूबर 1991 को हुआ था। स्विट्जरलैंड के लुसाने में हुई डायमंड लीग में भारत के नीरज चोपड़ा ने 88.05 मीटर भाला फेंककर दूसरा स्थान हासिल किया। श्रीलंका के रुमेश फथिराज ने 88.14 मीटर के थ्रो के साथ नीरज को सिर्फ 9 सेंटीमीटर के अंतर से पीछे छोड़कर पहला स्थान हासिल किया। ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स 86.69 मीटर थ्रो के साथ तीसरे स्थान पर रहे। महिला हॉकी विश्व कप में दूसरे दौर के पुल मुकाबले में नीदरलैंड्स ने भारत को 0-2 से हरा दिया है। भारत की ये टूर्नामेंट में पहली हार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयति। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और रात सुरमई में पहला गीत किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म का नाम है गोलमाल।

रात ने आकाश पर अपनी स्याही बिछाई, रात ने आकाश पर अपनी स्याही बिछाई, चांद ने उसमें हल्की सी चांदी घोल दी, और तन्हाई ने दोनों के बीच बैठकर अनकहे भावों की लकीरें खींच दी। कहीं कोई शब्द नहीं था, पर सब कुछ स्पष्ट था, जैसे कोई पुराना रिश्ता बिना आवाज के फिर से जी उठा हो, और समय बस किनारे बैठा देखता रह गया कि गहराई हमेशा शोर नहीं करती, कि गहराई हमेशा शोर नहीं करती। रात ने आकाश पर अपनी स्याही बिछाई, चांद ने उसमें हल्की सी चांदी घोल दी।

बात अगर प्रेम की करें तो प्रेम कोई उच्चारण नहीं, एक दीर्घ श्वास है जो भीतर उतरकर समय को भी विराम देता है। जीवन की धूल में जब पांव थकने लगते हैं, वही प्रेम है जो थाम कर रास्ता नया देता है। यह कोई उत्सव नहीं जो सजा कर जी लिया जाए, यह तो वह ताप है जिसमें मन स्वयं को गढ़ता है, कभी आंसू की तरह, कभी अनकही हंसी की तरह। यह हर रूप में आकर हमें थोड़ा और मनुष्य करता है। जीवन की परतों में छिपा एक मौन सस्पंदन, प्रेम वही है जो बिना मांगे भी साथ रहता है। प्रेम वही है जो बिना मांगे भी साथ रहता है। अगला गीत अनुराधा पौडवाल की आवाज में, फिल्म का नाम है साजन।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। रात सुरमई में अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है आज का अर्जुन और आवाज है लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

जीवन ने जो प्रश्नों की लंबी पंक्तियां लिखी, प्रेम ने उत्तर बनकर हर अक्षर को सहलाया। कभी छांव की तरह, कभी अनजानी धूप सा, उसने हर टूटन में भी एक अर्थ रचाया। यह संबंधों की परिधि में बंधता नहीं कभी, यह तो खुला आकाश है जिसमें सब समा जाता है। जहां तर्क थक कर बैठ जाते हैं रास्तों के किनारे,

वहीं प्रेम चुपचाप चलकर भी मंजिल बना जाता है। जीवन की कठोर धुनों के बीच प्रेम ही वह स्वर है जो गीत रचता जाता है, जो गीत रचता जाता है।

और अब वक्त आ चला है आपसे विदा लेने का। तो फिर मिलने के वादे के साथ आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी देर बाद यानी 3 बजे FM गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ, फिल्म का नाम है मासूम, आवाज है आरती मुखर्जी की। तो आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया में आर्थिक चुनौतियों के बीच भारत को विकास की एक बड़ी उम्मीद के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सुधार उनकी सरकार की प्रतिबद्धता है और भारत विकास की गति बनाए रखने के लिए लगातार कदम उठा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार केवल नियमों में बदलाव नहीं कर रही है, बल्कि नियमों की पूरी नीति में बदलाव ला रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत हमेशा से साझा भविष्य की भावना में विश्वास करता आया है।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं और इन अनुभवों ने एक बात बहुत स्पष्ट कर दी है, कोई चाहे या न चाहे, हर देश का भविष्य, उसका फ्यूचर एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही है। आइसोलेशन में कुछ संभव नहीं है, इसलिए शेयर्ड फ्यूचर्स की ये थीम आज और भी अधिक प्रासंगिक हो गई है और भारत तो हमेशा से इसी भावना को लेकर चला है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के नवनिर्मित भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 20 बिस्तरों वाले नशा मुक्ति केंद्र का भी उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता BNS के 3 नए आपराधिक कानूनों से नागरिकों की सुरक्षा और मजबूत होगी। मणिपुर में इम्फाल दीमापुर गुवाहाटी मार्ग पर लगभग 3 साल के अंतराल के बाद सार्वजनिक परिवहन सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। ये कदम राज्य में सामान्य स्थिति और आपसी संपर्क को बहाल करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर कुल 125 यात्रियों ने यात्रा की। हिमाचल प्रदेश के 36 सरकारी प्रबंधन वाले मंदिरों में 1 जनवरी 2024 से 1 अगस्त 2026 के बीच करीब 419 करोड़ 88 लाख रुपए का चढ़ावा मिला है। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विधानसभा में बताया कि राशि मंदिरों के रखरखाव, साफ सफाई, धार्मिक कार्यक्रमों, मेलों और पुजारियों और कर्मचारियों के वेतन पर खर्च की जाए।

जाती है। यूक्रेन के मध्य हिस्से के क्रिवी री शहर में रूसी ड्रोन हमले में 15 लोगों की मौत हो गई और 130 लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों के अनुसार घायलों में 23 बच्चे भी शामिल हैं। ये हमला एक शॉपिंग मॉल को निशाना बनाकर किया गया। क्रिवी री यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की का गृहनगर है। स्विट्जरलैंड के लुसाने में हुई डायमंड लीग में भारत के नीरज चोपड़ा ने 88.05 मीटर भाला फेंककर दूसरा स्थान हासिल किया। श्रीलंका के रुमेश पथिराज ने 88.14 मीटर के थ्रो के साथ पहले स्थान पर रहे। ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स 86.69 मीटर भाला फेंककर तीसरे स्थान हासिल किया। महिला हॉकी विश्व कप में दूसरे दौर के पूल मुकाबले में नीदरलैंड्स ने भारत को 2-0 से हरा दिया है। भारत की यह टूर्नामेंट में पहली हार है। नीदरलैंड्स के दोनों गोल पेनल्टी कॉर्नर से हुए। युब्बी यानसेन और फ्रेडरिके मार्टला ने एक एक गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

तुम्हारे सिवा कौन कर सकेगा मुझे तुम सा प्रेम, तुम्हारे सिवा कौन कर सकेगा मुझे तुम सा प्रेम, आता भी किसको है ऐसा जादू वादू करना, सिर्फ तुम्हारे आने से खिलता है तन और महक उठती है मन की मौलश्री। सौदच प्लव 1 MHz पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ और मैं हूँ आपके साथ आपकी रात की हम सफ़र मंजू। वक्त हुआ है 3:12 और 3 सेकेंड। हमराही प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत किशोर कुमार और आशा जी की आवाज़ के साथ।

कभी कभी ना दोस्ती इतनी नज़दीक आ जाती है कि कब वो प्यार में बदल जाती है हमें खुद भी पता नहीं चलता। उसका एहसास हमें तब होता है जब वो इंसान हमसे दूर चला जाता है। फिर हमें समझ में आता है कि अरे हमारे दिल को तो उसकी आदत पड़ गई है, अब उसे तलाशा कहाँ जाए। कभी कभी लगता है कि कुछ रिश्ते शुरुआत से ही अपना अंजाम लिखवा कर आते हैं, हम उसे पहचान नहीं।

और पहचान भी लेते हैं तो उसे वो जगह नहीं दे पाते जितनी जगह वो डिजर्व करते हैं। अगला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में।

0: आपको पता है इश्क में ऐसा ही होता है, दुनिया की सारी रस्में टूट जाती हैं, सारी कस्में टूट जाती हैं, साथ रहता है तो बस दो लोगों का साथ रहता है, एक पूरी दुनिया होती है दो लोगों के साथ में, जैसे अभी आपका और हमारा साथ है, इस साथ में भी कहीं ना कहीं एक अपनी दुनिया है। इस दुनिया को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अगला गीत।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुक न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

अगर दिल की बात को कहना इस गाने की तरह आसान होता तो ये ज़िंदगी कितनी आसान हो जाती। लेकिन सच्चाई यही है कि हम दोस्तों से बात कर सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, लेकिन जिसे हमें अपने दिल की बात बतानी है, जिसके लिए हमने सपने सजोए हैं, उससे ये बात कहना कितना मुश्किल होता है। जब भी ये बात कहने की बात आती है कि हम आपको चाहते हैं, ये कहना वाकई बहुत मुश्किल होता है। तब ऐसा लगता है कि इस संसार के जितने भी शब्द हैं, जितनी भी भाषा है, वो गायब हो गई है या ख़त्म हो गई है। बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी लगता है कि इस गाने की तरह हिम्मत करके, थोड़ी सी साथ, थोड़ा सा साहस करके, हिम्मत जुटा के कह दिया जाए तो शायद ज़िंदगी की तस्वीर कुछ और भी हो सकती है। अगला गीत अभी के लिए

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त

हर लफ्ज के तमाम मुआनी में हम भी थे, हर लफ्ज के तमाम मुआनी में हम भी थे, क्या दौर था कि तेरी कहानी में हम भी थे। उठती है एक कसक तेरी तस्वीरें देखकर, उठती है एक कसक तेरी तस्वीरें देखकर, ताज़ा में हम नहीं हैं, पुरानी में हम भी थे। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 101 मेगाहर्ट्ज़ पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफ़र मंजू। वक्त हुआ है 3:45 और 40 सेकेंड और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हमराही। अगला गीत मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में।

चोरी चोरी से? ना ना, हम तो पूरे ऐलान के साथ आपके साथ हैं, क्योंकि आपका और हमारा रिश्ता ही ऐसा है जहां हम जुड़ते हैं दिल से दिल तक। अगला गीत आप ही के लिए।

जब ये गाना मैं सुन रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जो सपने बहुत लंबे इंतजार के बाद पूरे होते हैं, तो उन सपनों के पूरे होने की जो खुशी होती है उसे बयां करना बहुत मुश्किल होता है. उसे हम शब्दों में बयां नहीं कर पाते. चाहे वो सालों के इंतज़ार के बाद हमने अपने पसंद की कोई गाड़ी ली हो, कोई घर लिया हो, हमें अपने पसंद की कोई जॉब मिली हो, या फिर वो इंसान हमने पाया हो जिसकी हम बहुत दिनों से मुराद कर रहे थे, दुआ मांग रहे थे कि काश ये इंसान हमें मिल जाए. और वो इंसान जब हमें मिलता है, वो प्यार हमें मिलता है, तो आसपास की जो पूरी दुनिया होती है वो और ज़्यादा खूबसूरत और सुंदर लगने लगती है. और ये इस दुनिया में हमारा यकीन और ज़्यादा बढ़ने लगता है. तो अगर आप प्यार में हैं तो ये गीत सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए.

हमराही में आज के लिए बस इतना ही। अब से थोड़ी देर में यानी कि 4 बजे सुनेंगे आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। आपसे फिर मुलाकात होगी 4:10 पर हमारे अगले प्रोग्राम में। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया में आर्थिक चुनौतियों के बीच भारत को विकास की एक बड़ी उम्मीद के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सुधार उनकी सरकार की प्रतिबद्धता है और भारत विकास की गति बनाए रखने के लिए लगातार कदम उठा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार केवल नियमों में बदलाव नहीं कर रही, बल्कि नियमों की पूरी नीति में बदलाव ला रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत हमेशा से साझा भविष्य की भावना में विश्वास करता आया है।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं और इन अनुभवों ने एक बात बहुत स्पष्ट कर दी है, कोई चाहे या न चाहे, हर देश का भविष्य, उसका फ्यूचर एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही है। आइसोलेशन में कुछ संभव नहीं है, इसलिए शेयर्ड फ्यूचर्स की ये थीम आज और भी अधिक प्रासंगिक हो गई है और भारत तो हमेशा से इसी भावना को लेकर चला है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक आज होगी, जबकि ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक कल होगी। बैठक की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक में 11 ब्रिक्स सदस्य देशों के खेल मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले महीने की 5 तारीख को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की चयन प्रक्रिया के जरिए किया गया है। मणिपुर में इम्फाल दीमापुर गुवाहाटी मार्ग पर लगभग 3 साल के अंतराल के बाद सार्वजनिक परिवहन सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। ये कदम राज्य में सामान्य स्थिति और आपसी संपर्क को बहाल करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर कुल 125 यात्रियों ने यात्रा की। अमेरिका के अलास्का में घने कोहरे के बीच एक छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में विमान में सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 पायलट और 6 यात्री शामिल हैं। स्विट्जरलैंड के लुसाने में हुई डायमंड लीग में भारत के नीरज चोपड़ा ने 88.05 मीटर भाला फेंककर दूसरा स्थान

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप सौदेश प्लव 1 MHz पर और मैं हूं आपके साथ मंजू। वक्त हुआ है 4:11 और 7 सेकंड। अरुणिमा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अरुणिमा एक ऐसा प्रोग्राम जहां हम जिंदगी की उलझनों से निकलकर उम्मीद की रोशनी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं अपने कुछ गानों के साथ, अपनी कुछ बातों के साथ। तो चलिए फिर इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं किशोर कुमार की आवाज़ के साथ।

जिंदगी की असली सच्चाई तो यही है कि हार के बाद ही जीत मिलती है। अब जिंदगी है तो मुश्किलें तो आएंगी ही, लेकिन इन मुश्किलों में हमें बहुत हिम्मत रखने की, बहुत हौसला बनाए रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर हमने अपने आप पर विश्वास करना छोड़ दिया तो शायद हम जिंदगी हार जाएंगे। लेकिन जब मुश्किल दौर हो तो अपने आप से प्यार थोड़ा ज़्यादा करना, क्योंकि आप ही वो इंसान हैं जो अपने ऊपर बीत रहे असफलताओं को, संघर्ष को जानते हैं। अब वक्त से बड़ा मित्र और कोई भी नहीं होता, तो अपने साथ हमेशा बहुत ज़्यादा पोलाइट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके संघर्ष सिर्फ आपके हैं। अगला गीत आप ही के लिए।

इस गाने की सबसे खूबसूरत लाइन पता है मुझे कौन सी लगती है? वो वाली जब रानी मुखर्जी कहती है कि चांद का टीका लगा के, मत्थे लगा के रात दिन तारों में जीना वीना इजी नहीं. मतलब गुलजार साहब की लेखनी ही ऐसा लिख सकती है कि कंगाली के दिनों में जिंदगी

को चुनौती देने की जो कोशिश है वो सच में जिंदगी को फिर से एक गहरी सोच के साथ, एक गहरे कमबैक के साथ साबित करने पर मजबूर कर देती है, सोचने पर मजबूर कर देती है। और जिंदगी का रवैया भी ऐसा ही होना चाहिए। जब आपके दिन सही नहीं है या जब चीजें आपके मुताबिक नहीं हो रही हो, तब भी जो जोश है वो इस गाने की तरह ही होना चाहिए। क्या आपने कभी जिंदगी के अंदर की जो तेज धड़कन है उसको महसूस किया है? अगर किया है तो फिर आपसे बड़ा विजेता तो कोई और नहीं है। अगर जिंदगी आगे बढ़ने की या अपनी मंजिल को पाने की सीटी बजा रही है तो फिर आपको आपका आगे बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगला गीत आप के लिए।

वाकई जब दिल और दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, फिर कोई भी चुनौती हमें ज़्यादा देर तक परेशान नहीं कर सकती। अक्सर लोग कहते हैं कि सुबह जल्दी उठना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ज़रा ध्यान दीजिए उस छोटी सी चिड़िया का जो सुबह सुबह जल्दी बिना किसी अलार्म के उठती है, और तुलना कीजिए अपने आप से कि एक छोटी सी चिड़िया जब उठ सकती है, जो परिंदे उठ सकते हैं, तो फिर हम तो वो हैं जिसके अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। तो लक्ष्य को पाना मुश्किल नहीं होता, कोशिश करनी चाहिए हर रोज़। हम हर रोज़ कोशिश करना भूल जाते हैं। अगर आज आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी ज़िंदगी से आपको कुछ और उम्मीदें हैं जो शायद ज़िंदगी से बड़ा सोचते हैं कि उन्हें वो मिले, और आज आपका वक्त वैसा नहीं है जैसा आप चाहते हैं, तो अपनी कोशिश को कभी नहीं रोकना, क्योंकि ज़िंदगी स्वर्ण अक्षरों में एक ना एक दिन लिखी जरूर जाएगी, क्योंकि ईश्वर हर किसी को उसके हिस्से का आसमान देता जरूर है, चाहे उसमें थोड़ा वक्त लग जाए। अगला गीत अभी के लिए।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

100.1 MHz पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ और मैं हूं आपके साथ मंजू। वक्त हुआ है 4:47 और 15 सेकंड और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अरुणिमा, एक ऐसा प्रोग्राम जहां हम जिंदगी की उलझनों से निकलकर उम्मीद की रोशनी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, कुछ उम्मीदों के साथ, कुछ बातों के साथ, कुछ गानों के साथ। तो ये अगला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में।

पूरे दिन की एनर्जी ऐसी भले ना हो लेकिन सुबह की शुरुआत में एनर्जी इस गाने की तरह होनी चाहिए। क्या कहते हैं आप? मुझे मालूम है आप मेरे साथ हैं और ये जो मेरी आवाज़ में आपको एनर्जी सुनाई दे रही है ना, इसका जादू भी आप ही की वजह से है। क्योंकि जब जब जब ऐसा लगता है कि आप सुन रहे हैं हमें, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हमें तो लगता है कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। अगर आज आप ज़िंदगी के किसी ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां पर आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होने वाला है या आगे कैसे बढ़ें, तो आपको बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं बनानी है कि ज़िंदगी में ये करना है वो करना है, बस एक कदम आगे बढ़ाना है। एक कदम आगे बढ़ाने से ये होगा कि आपको मंजिल भले ही नज़र ना आए लेकिन रास्ते साफ ज़रूर दिखाई देने लगेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार केवल नियम नहीं बदल रही बल्कि नियम बनाने की सोच भी बदल रही है। उन्होंने कहा कि भारत अब उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI के जरिए उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और देशों के बीच अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इसके बावजूद भारत को दुनिया में विकास और उम्मीद की एक बड़ी किरण के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के मंत्र एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के सभी देशों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के विकास के लिए 7 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इनमें विनिर्माण, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, तकनीक और नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्री अर्थव्यवस्था शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। उन्होंने डिजिटल क्षेत्र में भारत की प्रगति और तेज 5G विस्तार का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 50 लाख से अधिक परिवार प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि PM कुसुम योजना से किसानों को बिजली की लागत कम करने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं, महिलाओं, किसानों और मध्यम वर्ग के लिए जीवन आसान बनाने और कारोबार को सुगम बनाने पर लगातार काम कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत की प्रगति से वैश्विक स्थिरता भी मजबूत होगी। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप्स संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक आज होगी जबकि ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक कल होगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक में 11 ब्रिक्स सदस्य देशों के खेल मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख भाग लेंगे। इससे पहले भारत की अध्यक्षता में जयपुर में हुई ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक कल जयपुर घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी देने के साथ संपन्न हुई। जयपुर घोषणा पत्र में ब्रिक्स देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन, कौशल विकास और सुविधाजनक यात्रा जैसे क्षेत्रों पर जोर दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले महीने की 5 तारीख को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की चयन प्रक्रिया के जरिए पूरा किया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने इन्फ्लुएंजा के मामलों पर कड़ी नजर रखने के भी निर्देश दिए हैं। मणिपुर में इम्फाल दीमापुर गुवाहाटी मार्ग पर लगभग 3 साल के अंतराल के बाद सार्वजनिक परिवहन सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। ये कदम राज्य में सामान्य स्थिति और आपसी संपर्क को बहाल करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर कुल 125 यात्रियों ने यात्रा की। स्विट्जरलैंड के लुसाने में हुई डायमंड लीग में भारत के नीरज चोपड़ा ने 88.05 मीटर भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। स्लोवाकिया में चल रही अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की काजल ढोचक ने महिलाओं के 76 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 18 वर्षीय काजल ने फाइनल में चीन की जिंगरू सन को 7-0 से हराकर विश्व खिताब अपने नाम किया। काजल इससे पहले 2024 में अंडर-17 विश्व चैंपियन और 2025 में अंडर-20 विश्व चैंपियन का खिताब भी जीत चुकी हैं। भारत की तनु शर्मा

वाकई जिंदगी हंसने गाने के लिए है और इसे ऐसे ही बीतना चाहिए। अरुणिमा में आज के लिए बस इतना ही। अब से थोड़ी देर में यानी कि 5 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। आपसे फिर मुलाकात होगी 5:10 पर हमारे अगले प्रोग्राम में। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

स्वादिष्ट पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और मैं हूं आपके साथ मंजू। वक्त हुआ है 5:11 और 10 सेकेंड। शुरू हो चुका है प्रोग्राम भोर सुहानी। प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। भोर सुहानी ये वो समय है जब हमारा मन सबसे ज़्यादा शांत होता है, और जब हमारा मन शांत होता है तो हम खुद के ज़्यादा नज़दीक होते हैं, और जब हम खुद के नज़दीक होते हैं तो फिर ईश्वर तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए फिर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ के साथ।

0: बोर की सबसे बड़ी सीख यही है कि सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। जब हम मन से सच्चे हो जाते हैं तो भक्ति अपने आप सुंदरता बन जाती है। सावन का महीना है, यानी शिव का महीना है। जब सावन और शिव साथ साथ चलते हैं तो मन स्वतः अलौकिक भाव से भर जाता है।
1: बम बम भोला, बम बम भोला, बम बम भोला।

इस भजन को सुनते हुए ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो स्वयं उस दिव्य शिव विवाह की झांकी के साक्षी बन गए हों हम सभी। यही तो हमारे महादेव की महिमा है। शिव भक्ति हमें सिखाती है कि प्रभु के द्वार पर कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई सुंदर या कुरूप नहीं होता। जो जैसा भी है, सच्चा भाव लेकर अगर शिव के चरणों में आ जाए तो भोलेनाथ उसे सहर्ष अपने